उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चारपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह, 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज़।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुस्त।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned, stay tuned.
2: Coke Studio, Season 15.

0: This is FM 101.
1: I love FM 101.
2: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए।
2: सुनते रहिए FM 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: I love FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइतो जवाबित लागू हैं।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत तो जवाबित लागू हैं।
2: I love FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत तो जवाबित लागू हैं।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: हिस्सा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म अनासर के मजमू मजाइम को कौम और रियासत के इज्तमाई अज़्म के जरिए नाकाम बना दिया जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान और गूगल ने पाकिस्तान में डिजिटल मईशत और मसनू जहानत के फरोग के लिए तआवुन बढ़ाने के गर्ज से मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Barnu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: This is FM
6: 101. Sunte rahiye, FM 101.

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

0: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तसादी और तजारती तआवुन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल ने डिजिटल मईशत और मस्नूई जहानत के फरोग के लिए तआवुन बढ़ाने की गर्ज से एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी और आलमी कारोबारी नेटवर्क्स के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: दिस इज FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

0: Big radio, big style. Music.
1: Please,
0: FM 101.

0: and other international bodies to put pressure on India to release the Kashmiri political detainees. In the Indian Punjab, statewide shutdown was observed today to demand the release of Sikh prisoners.
1: This is FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
4: सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार। जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत जवाबित लागू है।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
0: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत तो जवाबित लागू है।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत तो जवाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सफरे हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
2: This is FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सफर हज का आगाज मुकम्मल सुकून के साथ वजारत मजहबी उमूर के ऑफिशियल और खुसूसी बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक आपके हज के मुकद्दस सफर में हर कदम पर आपके साथ है। अपनी हज अकसात की अदायगियां मुल्क भर में मौजूद 1700 से ज्यादा HBL ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, मोबाइल ऐप, PSID पेमेंट्स या डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए आसानी से जमा करवाएं। सफरे हज में आपका खिदमत गुजार, जहां ख्वाब वहां HBL। शराइत ज़वाबित लागू हैं।

सुनते रहिए FM 101 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

चल बोले उथे चलिए जिते हवन सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। द लेट नाइट शो विद फरहान खान से आपका हमारा साथ जुमे के रोज़ होता है। अपने दिल की बातें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब से लेके ठीक 12 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं आपसे हमने करनी होती हैं, वो बातें जो आपके दिल में होती हैं आपने हमसे करनी होती हैं। सो जनाब, दिल वालों की बज़्म सच चुकी है और इसमें आप लोग हमारे साथ होंगे। 04221100101 हमारे रابطے का नंबर, जिस पे आप लोग कॉल हमें कर सकते हैं और इसके साथ साथ FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ हो सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ रहेंगे और इस दिल वालों की बज़्म में हमेशा की तरह आपका हमारा साथ बड़ा खूबसूरत सा साथ होता है। और जुमे का रोज़ ऐसा होता है जिसमें शिद्दत से इंतज़ार होता है कि हम इस बज़ में जाएंगे। 101 इंटरनेशनल के तमाम सुनने वाले, पाकिस्तान भर में इस आवाज़ को सुना जा रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। दिल वालों की बज़ में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह दिल वालों की बज़ महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ जज्बात की कदर होती है, जहाँ मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है और जहाँ अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ एहसासात ज़ख्मों पे मरहम बनते हैं और जहाँ हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। सो ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं, जो वफा को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक इबादत समझते हैं। यहाँ ना झूठ की गुंजाइश होती है ना धोखे का गुजर, यहाँ में सिर्फ और सिर्फ सच बोलने का हुनर होता है और लबों पे वो बातें जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। सो वेलकम टू द दिल वालों की बज़्म और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने FM 101 को ट्यून किया। पाकिस्तान भर में, इंटरनेट के थ्रू, दुनिया भर में जहाँ जहाँ में सुना जा रहा है, आप सब सलामत रहें, खुश रहें। बताइए हाल व अहवाल कैसा है, जिंदगानी कैसे गुजर रही है, शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी। ये उस वक्त और खूबसूरत हो जाती है जब इसको हम बहुत खूबसूरती के साथ गुजारने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, हम इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। हम छोटी छोटी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं, इन छोटी छोटी बातों में उलझ कर हम अपनी बड़ी खुशियां खो देते हैं। सो जनाब, खुश रहें, जहां रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज के शो में, आज थोड़ा सा बड़ा ही डिफरेंट किस्म का शो है और बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का शो है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं कि आप उनके सहर में मुब्तला हो जाते हैं और उनका सहर जो है ना आप पे ऐसा तारी हो जाता है कि फिर आप अगर गुफ्तगू का फ़न नहीं रखते तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो लफ्ज़ उतरना शुरू हो जाते हैं जो आपने कभी, जिनको कभी भी अदा ना किया हो, और आपके जो प्रोग्राम है ना उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। सो आप लोग हमारे साथ होते हैं, आप लोगों के लफ्ज़, आप लोगों की बातें, आप लोगों का ख्याल, आप लोगों की सोच और आप लोगों के जो बातें हैं ना इस प्रोग्राम को चार चांद लगा देती हैं। 04221100101 हमारे रابطے का नंबर, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ रह सकते हैं और म्यूज़िक का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा, आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी चलता रहेगा। अभी जब मैं लौट के आऊँगा तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आज बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म के मौजू के साथ हम आज के शो में शामिल हो रहे हैं। मैं एक ट्रैक सुनाने जा रहा हूँ और आप अक्सर मेरे शो में इस ट्रैक को सुनते हैं, तो मेरा दिल किया कि आज शो का आगाज़ क्यों ना इस ट्रैक से कर दिया जाए, क्योंकि कुछ ट्रैक होते हैं जो आपके सिग्नेचर ट्रैक बन जाते हैं और जिनको आप चलाते हैं और फिर उसके बाद हमारे सुनने वाले जो है ना वो भी उसकी डिमांड करते हैं, वो भी कहते हैं भाई

So, जनाब आप लोगों के मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, आप लोगों की कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शो का आगाज़ करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही दिलकश सी आवाज़ के साथ। वेरी क्लासिकल नंबर को मैंने आज उसका इंतखाब शो के आगाज़ में किया है और बहुत ही क्लासिकल सी आवाज़ जिसको मैं आज चलाने जा रहा हूँ। तंजीला मुगल की खूबसूरत सी आवाज़ को शो में शामिल करेंगे, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए FM 101। इस ट्रैक को ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा। Here we go.

0: ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سبھی سننے والوں کو ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. بڑا ہی کلاسیکل سا نمبر جو اس ٹائم آپ لوگ سن رہے ہیں. میرے بیک گراؤنڈ میوزک میں اس وقت چل رہا ہے تنزیلہ مغل کی خوبصورت سی آواز, اور کیا ہی کمال کی راگ الاپ پلٹے, کمال ہے جناب. کیونکہ کلاسیکل جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہر جو جتنے بھی میوزک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی میوزک میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے کلاسیکل جو ہے نا وہ بیس ہے. کلاسیکل کو سمجھنا, کلاسیکل کی ڈیپتھ میں جانا. اچھا, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ موسیقی کا بہت شوق ہوتا ہے, گانے کا بہت شوق ہوتا ہے, ایک ایج آتی ہے بچوں کو تو خاص طور پہ ہوتا ہے کہ جی ہم سنگر بننا چاہتے ہیں, ہم گانا چاہتے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا گانے تھوڑا انہیں لگتا ہے کہ کہیں ان کا سر اچھا لگ رہا ہے, کہیں پہ وہ ان کی ردم کے اندر ہیں, سر کے اندر ہے, ان کو لگتا ہے سم ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ موسیقی کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں, جب آپ تعلیم لینے جاتے ہیں, اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ موسیقی اتنا آسان کام نہیں ہے. چونکہ اب تھوڑا انسٹرومینٹلز آ گئے ہیں, تھوڑا وائس ویریشن ہو جاتی ہے, انسٹرومینٹل اس طرح کے آ گئے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو مارجن مل جاتا ہے. اگر آپ بے سرے بھی ہیں تو آپ کو وہ جو سسٹم ہے نا وہ سر میں لے آتا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل گائکی جس کو کہیں گے نا, سنگنگ جس کو کہیں گے, جب آپ سنگنگ کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک پوری سائنس ہے, یہ پوری ایک دنیا ہے, یہ ایک پورا جہان ہے, ایک پوری کائنات ہے موسیقی. اور سر جو ہے, سر مطلب سر, جب آپ سا کی صرف بات کریں گے نا تو اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو شاید میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, سنا ہے, اور جنہوں نے موسیقی چھوڑ دی جب ان سے سا نہیں کہا گیا, انہوں نے کہا نہیں اب اس کے بعد بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ سمجھ گئے, وہ اس کی جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور جب سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے والا کام نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑا بہت سر ہمارے اندر ہے یا لے ہمارے اندر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک پرفیکٹ یا ایک اچھے سنگر بن سکتے ہیں. ادروائز جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, وہ آپ سب کے اور ہم سب کے سامنے. بٹ وین یو انڈرسٹینڈ اے میوزک تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں, میوزک از انٹائرلی ڈفرینٹ. اور موسیقی جو ہے جسے گائکی کہتے ہیں, سر کو لگانا, سر کو سمجھنا, سر کی ڈیپتھ میں جانا, وہ ایک بہت ایک ڈفرینٹ دنیا ہے. سو جناب, جب بھی میں کلاسیکل لوگوں کو سنتا ہوں تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یس دے آر فیو پیپل ہمارے ہاں جو کچھ گا رہے ہیں, کچھ ڈلیور کر رہے ہیں, جو موسیقی کو سمجھ کے اس کی گہرائی میں جا کے اس کی جو ایک حق ادا کرنا ہوتا ہے نا. انفیکٹ حق تو مکمل طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا, یہ تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے. سو جناب, یہ ایک مشکل کام ہے. آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں تو یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ دوں یہ بہت آسان کام اب لوگوں نے بنا دیا ہے. عدیل بھائی کا بہت بہت شکریہ, ہمارے اسٹوڈیو میں داخل ہو چکے ہیں, دروازہ انہوں نے کھولا اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے دروازے کو بند کیا, اور اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا. اور جب یہ کپ چائے کا لے کے آتے ہیں نا, آپ یقین جانے میرا دل کرتا ہے کہ بس میں آنر نہیں بتا سکتا. بہت بہت شکریہ دل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتوں کا شکریہ. سو جناب, ابھی ایک کالر لے لیتے ہیں میرے خیال میں, ہے نا. میرے کافی, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. نادیہ ہمارے ساتھ تھیں, اینڈ شی سیڈ کہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے شو کا, لاسٹ شو میں بھی ہمارے ساتھ تھیں. اچھا, میں تھوڑا سا آج کے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے کہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم ججمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں, کیوں ہم دوسروں کی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وائی, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یو نو کہ ہم ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, ہم فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں, ہم کسی کے ایک عمل سے اس کے پورے جو نا ایک کردار ہے نا اس کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب میں اوور آل بات کر رہا ہوں, ہم سب اس میں شامل ہیں. اچھا, ہم اکثر یہ ہوتا ہے ہم کہانی کا صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور پوری کتاب پہ ہم رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. آج میں ایک کتاب رونمائی تھی طارق محمود صاحب کی, ہم کے ٹھہرے اجنبی, اور اس کتاب پہ ماشاء اللہ پاکستان کے بہت ہی زبردست جو ناولسٹ, کالمسٹ, بیوروکریٹ, جتنا بھی ہمارا انٹلیکچوئل جو ایلیٹ تھی وہ اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور مجھے بھی سعادت ملی کہ میں ایز اے مجھے نظامت کے وہ موقع ملا اس بک کی. اچھا, میرے لیے بڑی حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی کتاب, اب جس طرح میں نے یہ بات کی کہ ہم کسی कहानी का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ते हैं और पूरी किताब पे राय दे देते हैं। मुझे उस बात की बड़ी खुशी, मेरे ये लर्निंग थी कि मैंने देखा कि जो अहले इल्म लोग होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं और बड़ा सोच समझ के, बड़ा फूंक फूंक के बोलते हैं और अपने मुशाहदे और तजर्बे के साथ बोलते हैं। जिन लोगों ने किताब को नहीं पढ़ा हुआ था उनका किताब को बयान करना या अहले किताब के बारे में बात करने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। जिन्होंने किताब को पढ़ा हुआ था उनका किताब को एक्सप्रेस करना किताब के बारे में, अब जैसा डॉक्टर असगर नदीम सैयद साहब, बड़े मारूफ नाम नावलिस्ट, कॉलमिस्ट और ड्रामा नवीस हर हवाले से, उन्होंने किताब को पढ़ा, जब उन्होंने किताब को एक्सप्रेस किया पता चलता था कि किसी ने किताब पढ़ी है और पढ़ने के बाद उस किताब के बारे में पूरा उसका अहवाल बयान करना, जो अहले किताब जिसने किताब लिखी है उसके लिखने के अंदाज़, उसके करैक्टर्स, उस करैक्टर्स के अंदर जो दुनिया है, वो करैक्टर कहाँ कहाँ पे घूम रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें, वो एक वाज़ह तौर पे वो बता रहा है उसके अंदर। अब बहुत से लोग जिन्होंने किताब पढ़ी भी नहीं लेकिन वो किताब के बारे में एक सरसी से अपना एक व्यू दे रहे हैं और वो व्यू बड़ा ही फेक किस्म का, एक बड़ा वेक किस्म का, एक बड़ा अजीब किस्म का, कि आप उसको, अब आप सोचते हैं कि यार इसने किताब भी नहीं पढ़ी लेकिन ये अपना जो मुशाहिदा बयान कर रहा है ये बिल्कुल इस किताब से हट के। अब जो किताब लिखने वाला है वो भी बेचारा परेशान होता है कि भाई मेरे करैक्टर्स डिफरेंट हैं, मेरी कहानी डिफरेंट है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, मैं किताब किसी और एंगल में लिख रहा हूँ और ये जो स्पीकर साहब हैं इसको जो बयान कर रहे हैं ये और पर्सपेक्टिव बयान कर रहे हैं। यही होता है कि हम किसी की कहानी का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ते हैं और फिर हम पूरी किताब पर राय दे देते हैं। हम किसी के बारे में जानते भी नहीं हैं और या फिर हम अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, या अगर कोई किसी के बारे में अच्छी राय दे रहा है, कोई किसी के बारे में अच्छा गुमान कर रहा है, कोई किसी के बारे में अच्छी बात कर रहा है, हम कह देते हैं कि जी ओ नहीं जी ऐसी बात तो है, हम उसके नकाइस बयान करना शुरू हो जाते हैं, हम उसकी बुराइयां बयान करना शुरू हो जाते हैं। सो 04221100101 इज़ अ डायलिंग नंबर, आप लोगों की कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जब कॉल उठाता हूं तो तब आप लोगों की कॉल कट चुकी होती है, तो मैं इसके लिए माजत खाऊं, मेरा कसूर कोई नहीं है इसमें, ये सब कसूर दिल का है जिसने कॉफ़ी का एक खूबसूरत सा कप मेरे सामने रख दिया है, चाय और कॉफ़ी मिक्स, थैंक यू सो मच। सो जनाब, ये आज का हमारा मौजू है कि हम जजमेंटल क्यों हो जाते हैं, हम ख़ुद से फ़ैसले करना क्यों शुरू कर देते हैं, हम किताब का एक सफ़ा पढ़ते हैं और पूरी किताब पे राय देना शुरू कर जाते हैं। अच्छा, बात सफ़ा ये भी होता है किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक मैंने ना ट्रैक निकाला हुआ है और ये जो ट्रैक है ना, मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्ती शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमाए और ये उनका फेवरेट, वन ऑफ़ द फेवरेट ट्रैक है, आई थिंक सो, मैं पता नहीं खुद से गुमान कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसे लगता है उनको बड़ा पसंद आएगा। सो एक कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद हम इस ट्रैक को भी शामिल करते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
1: जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन
1: जी? मैं हफ्जा सिदरा कुरैशी मंदरा से।
0: हफ्जा सिदरा मंदरा से, कितना प्यारा है ना, पूरा पूरे पूरा रदीव काफिया मिल रहा है आपके नाम का है, हफ्जा सिदरा मंदरा। हैं हफ्जा, क्या करती हैं आप?
1: मैं भाई घर पे होती हूँ।
0: क्या बात है, कमाल है, खुशकिस्मत है जो घर पे होते हैं, हमें तो घर वाले घर रहने ही नहीं देते। देखिए यहाँ सारा दिन घर से बाहर थे, घर घुसे हैं, घर वालों ने कहा चले जाएं, अब आपका शो का टाइम हो गया।
1: नहीं लेकिन जब शाम को घर भी जाते हैं तो फिर वो प्रोटोकॉल भी देते हैं, यार थके यार नहीं।
0: हाँ ये तो है, प्रोटोकॉल तो मिलता है। अफजा, जजमेंटल हैं आप, फैसले कर लेती हैं लोगों के बारे में?
1: नहीं, मेरे बारे में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मैंने कभी नहीं किया।
0: अच्छा, आपके बारे में लोग फैसले करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं फैसला आप, ऐसा क्या करती हैं लोग आपके बारे में फैसला कर लेते हैं?
1: मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी आपको फनी सी बात लगेगी कि मैं,
0: नहीं नहीं आप फनी बात बताएं, हम फनी बात सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ।
1: कि मैं बोलती बहुत कम हूँ।
0: अच्छा,
1: जो मेरे खानदान वाले वो मुझे कहते हैं ये पागल है, मेंटल है।
0: आप कम बोलती हैं और आपको कहते हैं ये मेंटल है।
1: मतलब अपनी जान में गुम रहती है, मतलब इस तरह ना, तो मुझे वो कहते हैं इंग्लैंड।
0: मैं अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, मैं अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अच्छा आप क्यों खामोश क्यों रहती हैं, लगता दुनिया आप खामोश रहती हैं, क्या वजह है?
1: बहुत खामोश रहती हूँ मैं, मतलब ना घर पे वैसे घर वालों के साथ ही हूँ लेकिन बहुत कम बोलती हूँ। मतलब
0: कम बोलने की वजह क्या है, डर लगता है कि कुछ गलत ना बोलता हूँ?
1: नहीं मुझसे बात ही नहीं होती है, अगर मैं 10 बंदों में बैठी होती हूँ ना तो यकीन माने कि मुझसे बोला ही नहीं जाता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
0: नहीं देखे ना इस वक्त तो आप, आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बाहर दुनिया सुन रही है, मुझे नहीं लगता आप कम बोलती हैं।
1: लेकिन मैं आपको कहूँ कि मैं इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि मुझे लग गया मैं अपने एक भाई से बात कर रही हूँ, ये मुझे कॉन्फिडेंस देने।
0: तो आपके आपके घर में बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे, कजन्स भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, आप उनको भी ऐसी फील करें ना।
1: नहीं मैं घर पे करती हूँ, घर पे इसीलिए करती हूँ, मम्मी से बहुत सारी बातें हैं, बहनों से सारा दिन लगी रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं करती।
0: अच्छा क्या समझते हैं आपको, समझते हैं आप बहुत मगरूर हैं?
1: मतलब समझते हैं कि ये मतलब किसी को बुलाती नहीं है, गुस्से वाली है या मगरूर है?
0: आप गुस्से वाली हैं?
1: बहुत ज़्यादा करती हूँ।
0: अच्छा क्या बंदे खा जाती हैं, क्या करते हैं गुस्से?
1: नहीं बंदे नहीं, मतलब गुस्से में ऐसा करती हूँ ना कि बस अगर गुस्सा कर रही होती हूँ तो अभी रिसेंटली
0: क्या करती हैं, घर की चीज़ें तोड़ देती हैं?
1: नहीं नहीं मैं चीज़ें नहीं तोड़ती
0: हूँ। बाल नोच देती हैं बहन के?
1: नहीं मैं गुस्सा करती हूँ।
0: अच्छा नहीं नहीं आपने बताया था कि आप आपके आपके साथ लोग करते हैं जो भी करते हैं ना, आप नहीं करती कुछ भी, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, वो आप ही के बाल खींचती होंगी बहनें, है ना?
1: नहीं भाई।
0: अच्छा नहीं नहीं आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप इस बारे में मत सोचें कि आप अच्छा नहीं बोलती हैं, आप नहीं बोल सकती हैं, आप बोल सकती हैं। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे ना हम ये काम कर सकते हैं, जब हम ये सोचेंगे ना हम नहीं कर सकते तो तब आप फिर वो नहीं कर सकेंगे, तो आप भी कॉन्फिडेंट इजी हो के आप सबसे बात किया करें।
1: नहीं भाई अब मैं कोशिश करती हूँ, मैं सब आज इसको कॉल करती हूँ,
0: वेरी गुड। नहीं नहीं आपका कॉन्फिडेंस ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया, गुड।
1: थैंक यू भाई,
0: सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
1: और अदील भाई हैं उनको भी सलाम।
0: अदील भाई को बहुत बहुत सलाम, अदील भाई ने बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है, कमाल की।
1: इस पर
0: नहीं नहीं इधर ही हैं वो, उन्होंने किधर जाना है, मेरी जान छोड़ सकते हैं ऐसे। चलें थैंक यू हफ्ज़ा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जनाब द वाज हफ्ज़ा विद अस, मंद्रा से हमें कॉल कर रही थी, एक और कॉलर है, लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर, गुलाम मुस्तफा।
0: अच्छा
2: क्या हाल है सर?
0: सर बेहतर हूँ, पहले से
2: कब
0: बहुत नहीं, ये चाय पिए ना सर, चाय पिए मैंने उससे बहुत बेहतर हो गया, दिल से आपने चाय पिलाई है कॉफ़ी डाल के,
2: अल्लाह बेहतर करे,
0: आमीन आमीन सर। आप बताएं आप क्या करते हैं?
2: मैं सर कुछ नहीं करता,
0: आप लोग कमाल,
2: ब्लाइंड हो गया हूँ।
0: आपने आप जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोगों के बारे में राय कायम करते हैं?
2: सर मैं बैलप था सेशन कोर्ट में, मेरा काम ही ये था राय कायम करना,
0: अच्छा
2: फैसले करना,
0: फैसले करना,
2: सारी जिंदगी मैंने ऐसे ही गुजारी है।
0: कैसे फैसले करते थे आप?
2: इसके अंदर सच क्या है झूठ क्या है उसका मैं जजमेंट कर लेता था।
0: अच्छा यानी आप देखते ही बता देते कि बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिर तो आप मेंटलिस्ट हुए ना, मेंटलिस्ट होता है जो किसी के दिमाग को पढ़ लेता है।
2: सर बस अल्लाह की तरफ से ही
0: था। जबरदस्त जी, ये भी एक क्वालिटी होती है जी, ये आप किसी के बारे में, मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि आप जज कर लेते हैं, सपोज़ आपका जो काम है उस काम में इसकी ज़रूरत होती है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जब अगर आप कर रहे हैं किसी की।
2: हमारे बड़े कहते थे जो बंदा आके आपको बात सुना रहा है इसकी बात भी यकीन नहीं करना जब तक के दूसरी तरफ से भी आपको पता ना चल जाए।
0: ज़बरदस्त,
2: ठीक है, ये ना हो ये रोके आपको दिखा रहा है और जुल्म यही करके आया हो।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब एक साइड की बात कभी नहीं सुननी, आपने हमेशा दूसरे की भी बात सुननी है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपके लिए, अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे सर।
2: मैं सर 17 से ना मेरी आंखें चली गई।
0: जी जी जी जी, आपने लास्ट शो में बताया था।
2: मैं रेडियो पे होता हूँ, ये रेडियो मैंने स्पेशल लिया, आजकल रेडियो का दौर नहीं है लेकिन मैं रेडियो रखा हुआ मेरे पास और मैं 24 आवर रेडियो से अपना दिल बहलाता हूँ और आपके प्रोग्राम से महजूज होता हूँ, आपकी गुफ्तगू से। उदास ना किया करें,
0: ठीक
2: आप उदास भी कर देते हैं रात के टाइम, उदासी अच्छी बात नहीं,
0: ठीक है सर, नहीं करते उदास। मैं आपको गुदगुदी करूँ आके, आपको गुदगुदी करूँ आके ताकि आप हंसे। चले ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, हमारे साथ दोस्त थे और कितना प्यारा बोलते हैं ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: माशाल्लाह, कौन सा
3: उस्ताद मोहतरम फरहान खान सत बिस्मिल्लाह जी, आप वेलकम।
0: प्रो मैक्स आ गया। सर जी तुसी सलाम ते बड़ी मतलब धीमे लहजे से कीती सी ते अचानक बैटरी चार्ज हो गई है।
3: जी उस्ताद मोहतरम क्या हाल है,
0: बिल्कुल ठीक सर, बेहतरीन जबरदस्त।
3: आपके जलवे जब हमें बेकरार करते हैं ते आपके दर पर आ जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए।
0: क्या बात है, हाजिरी लग गई सर।
3: उस्ताद मोहतरम में शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है, आपकी नजर कर रहा
0: हूँ। जरूर करें एक शेर और आखिरी।
3: मैं एक टूटा हुआ पत्ता हूँ,
0: अच्छा।
3: मेरी औकात क्या फरहान। मैं एक टूटा हुआ पत्ता हूँ, मेरी औकात क्या फरहान। दिल जला देते हैं तेरे शहर के लोग फरहान।
0: अच्छा जबरदस्त,
3: आपने नाम भी रखा हुआ, बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है ना। दिल वालों की बदम तो इसलिए ये शेर आपकी नजर। उस्ताद मोहतरम एक दो लाइन में नजम है, अगर आप इजाजत दें।
0: नहीं दूंगा इजाजत, बिल्कुल भी नहीं दूंगा।
3: अच्छा मैं फिर चला जाऊँ।
0: हाँ जाए शाबाश, नहीं खुश होके जाए, बहुत शुक्रिया, जीते रहें, सलामत रहें।
3: अच्छा एक दो नाम तो,
0: थैंक यू।
3: एक सुने ना,
0: मुझे जुबानी याद है वो नाम,
3: ये एक शाहिद इंसारी साहब हैं हैदराबाद से, मेरी बेटी है रमशा बेटी, अनिला बेटी, और इसके अलावा फहीम जट साहब है, और मेरी सानी और मेरी बेटी है कमांडर 101 सदफरानी।
0: चले जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच,
3: बहुत शुक्रिया, अगली दफा सुना देंगे।
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और जनाब एक ट्रैक सुनाएंगे, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे, और जो मैं ट्रैक सुनाने जा रहा हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आई मस्ट से कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड मैं ना इस, मुझे ये किसी ने सुनाया था, फिर उसके बाद मुझे इस ट्रैक से मोहब्बत हो गई। और जनाब आई एम गोना प्ले ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ जावेद बशीर एंड अकबर अली, द ट्रैक इज़ कॉल्ड नैना मोरे।

0: मर गए हम, खुली रही आंखें, मन अटके आ बेपरवाह दे नाल। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कोई जंग लड़ा होता है। हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उलझा होता है, कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में चीज़ चल रही होती है। हमें ये लगता है कि हम जब किसी को देखते हैं ना, किसी की ज़िंदगी को देख के बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं, बड़ा मुतासिर हो रहे होते हैं। हम देखते हैं यार इसकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है, आई विश कि मेरी भी ऐसी ज़िंदगी हो। हम किसी स्टार को देखते हैं और कहते हैं कि यार ये बड़ा सुपरस्टार है, काश मैं भी इस तरह का सुपरस्टार बन जाऊं। हम किसी सेलिब्रिटी को देख लें या फिर किसी बहुत अमीर इंसान को देख लें कि जिसके पास ज़िंदगी की पॉग्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, बहुत कुछ हैं। अगेन वही बात, हम वो कहते हैं ना पिक्चर की एक साइड देख रहे होते हैं, हम एक सफ़ा पढ़े होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके मामूलात क्या हैं, ये किस स्ट्रगल से गुज़र रहा है, ये किस कर्ब से गुज़र रहा है, ये किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। क्योंकि हम उसकी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़ रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि उसके पास फ़ैन फॉलोइंग होती है, उसके पास व्यूज़ होते हैं, उसके पास क्लिक्स होते हैं, उसके पास लाइक्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, ये वैसे हमने कभी गौर किया इस बारे में? और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी हो और हर खुशी के पीछे मुस्कुराहट, एक अजीब कहानी होती है इंसान की ज़िंदगी में ना। सो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी एक सफ़ा मत पढ़िए, उस फिर सफ़े की बुनियाद पे फैसला मत करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई
0: जी। वालेकुम सलाम,
1: कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा?
1: हयाम बात कर रहा हूँ मर्दान से।
0: हयाम मर्दान से, कैसे हैं भाई आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब आप कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। मुझे बताइए कि
1: जी बोले,
0: आप मुझे बताएं कि आप जजमेंटल हैं, फैसला कर लेते हैं फौरन से लोगों की ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं
1: किस हद तक, मतलब 99% कर लेता हूं।
0: अच्छा, यानी आपको पता
1: चल की बात ये की बात जितनी मैंने वो मतलब जो राय मेरी होती है ना, ठीक है ना, उस टाइम ज्यादा लोगों से इत्तेफाक भी कर लेते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: यानी जो
1: लास्ट जी
0: जो राय आप कायम करते हैं वो ठीक होती है आपको लगता है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जितने राय कायम किए वो सब लोगों ने इस पे इत्तेफाक ही किए। हाँ, एक दो हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन बाद में उनको भी रिग्रेट हुआ इस बात की, काश को मेरी बात मान लेते।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: आपको पता है कि मैं फ्रांस फैमिली से हूँ, तो फ्रांस फैमिली से आपको पता है थोड़ा सा मतलब वो दिमाग से काम लेते हैं, जोश से काम नहीं लेते।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो अगर दिल, अगर दिल से काम लिया जाए, दिमाग से काम ना लिया जाए, फिर
1: दिमाग से ना काम लिया जाए, फिर जोश से काम नहीं लिया जाए, तो फिर वही है कि बात आपको पछताना पड़ेगा।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है फैसला दिल से करना चाहिए या दिमाग से करना चाहिए?
1: फैसला दिमाग से करना चाहिए और पूरे होश आवाज में करना चाहिए।
0: और अगर किसी फैसले में दिल शामिल हो जाए उसका क्या करें?
1: अगर दिल शामिल हो जाएगा, फिर दिल तो बच्चा है ना, फिर दिल की कहाँ सुनते हैं।
0: अच्छा, दिल की नहीं सुननी आपने?
1: बिल्कुल भी, मैंने तो आज तक आई एम 22 years old, तो मैंने अब तक तो अभी दिल की सुनी नहीं, हमेशा दिमाग को ही।
0: क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इतनी ऑब्जर्वेशन, इतना मुशाहिदा और इतनी डीप फिलॉसफी कि आप कहते हैं जी बस दिमाग से जो फैसला कर लिया वो ठीक होता है। जबरदस्त सयाम।
1: अच्छा फरहान भाई, मैं सेकंड टाइम आपसे बात हो रही थी, क्या लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी शायद आपको याद हो, जब आप अली भाई के साथ आए थे, सैलपोर्ट आए थे।
0: जी बिल्कुल। अच्छा चले ठीक है, चले जाते हैं, आप कहते हैं तो चले जाते हैं अली भाई के पास किसी दिन।
1: लाजमी कल आपने आना, ठीक है ना, कल आएंगे अली भाई रात को।
0: अच्छा चले, मैं अली भाई के साथ लाजमी शो में हूँ, आप देखिएगा किसी ना किसी तरीके से। हाँ
1: बिल्कुल। अच्छा फरहान भाई जी, आपको इंडिपेंडेंस डे का जो शो था लास्ट में, जब आप सारे आज कंबाइन थे, अरम भट्ट भी थे, ठीक है, आप भी थे, वो बाबा जी भी आए थे, याद है आपको?
0: जी बिल्कुल याद है।
1: अब मैं बताऊँ आपको, ठीक है, मैंने उसने क्या किया। उसे मैंने कॉल मिलाई थी कि 185 कॉलें मेरी गई लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली।
0: 185
1: काले गिनने के में होंगी कि जो फोरे हैं ठीक है वो पीछे होगी थी काले मिला मिला के नंबर। और पता मैंने आपको दो मोबाइल पर रखे हुए दोनों से मैं काले मिला रहा ठीक है। एक बड़े एंड्राइड से स्मार्टफोन से मैंने कहा यार किसी से तो मिल जाए मुझे बात करनी है बाबा जी से बात करनी है बस बायोमेट्रिक है डॉक्टर बायोमेट्रिक है लेकिन वो कहते हैं मेरी उस दिन किस्मत बस खराब थी तो बस ठीक है कोई बात नहीं।
0: कॉलों के बाद भी आपकी कॉल नहीं मिली है
1: और मजे की बात पता है जितने भी कॉलर आए हैं ठीक है सारे बिस्तरे ही आए हैं ठीक है मतलब कोई किसी ने ढंग की बात तो की नहीं है तो मैंने कहा यार मेरी मिल जाती तो क्या था।
0: नहीं नहीं सारे अच्छे हैं अपनी जगह हम बहुत शुक्रिया कल मुलाकात होती है आपसे हैं थैंक यू।
1: अरे फ्रांस भाई देखें लास्ट में आना ठीक है मैं अली भाई को बता दे रहा हूं कि कल आपने आना है ठीक
0: है ना सरप्राइज सरप्राइज आपने बताना नहीं है उनको
1: चलिए ठीक है सरप्राइज है लेकिन मैं वेट कर रहा हूं लास्ट में आना आपने ठीक है ना।
0: आऊंगा लाजमी लाजमी आऊंगा ओके थैंक यू जीते रहे सलाम अल्लाह हाफिज। Alright, now that was Hayam with us. Thank you so much, Hayam. आप कॉल करें मरदान से आपने कॉल किया है ना मरदान ही बताया ना उन्होंने चले नहीं इनको भी नहीं पता मतलब मैं मेरे इर्द गिर्द भी ऐसी दुनिया बाद है जो अपनी अपनी दुनिया में ही नहीं है उनको ये नहीं पता। अच्छा जी मुझे लगता है अगर अदील साहब हमें देख रहे हैं और अदील भाई न्यूज़ ब्रेक की जानी बढ़ रहे हैं अदील भाई भी सोचो में मतलब आज सारे मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना वो अपने ख्यालों में हैं अपनी एक दुनिया में है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा वो कहते हैं ना इंसान को कभी भी अपना काम किसी पे नहीं छोड़ना चाहिए अपना काम खुद करना चाहिए जब आप किसी पे काम छोड़ेंगे ना तो फिर ये कुछ ही होगा। मेरे इर्द गिर्द ऐसे खूबसूरत लोग हैं ऐसी खूबसूरत अदाओं वाले लोग हैं कि माशाल्लाह बस मैं उनकी अदाई देख रहा हूँ और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कॉलर कहाँ से थे तो वो अपनी दुनिया में घूम में खोए हुए हैं। अच्छा अच्छा जनाब मुझे ऐसे लग रहा है कि न्यूज़ ब्रेक की जानी बढ़ना है हमें और फिर उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस भी हैं जो कि फेसबुक पे आप लोग हमें कर रहे हैं थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेज मैं पढ़ता जाता हूँ जब तक न्यूज़ आती हैं तो अस्सलाम वालेकुम मैं शफकत अली खान मियूँ और मेरे साथ वालिद साहब शौकत अली मियूँ नंबरदार चाचा जी मुश्ताक माशाल्लाह सारा ख़ानदान ही बैठा हुआ है भाई मास्टर सलीम जावेद चलें जी बहुत शुक्रिया शफकत साहब थैंक यू सो मच। जुनैरा खान हमारे साथ हैं कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंस इंसान को बहुत ज़्यादा जज कराता है लास्ट टाइम इसने ऐसा किया था कि अभी भी ऐसा ही होगा। ऑलराइट
2: वजीर आजम ने इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए जदीद आलात के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इजहार किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मलाइशिया के वज़ीर दाखिला ने आज रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान 49 ख्वारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
3: This is FM 101.9.

0: मन अटके बेपरवाह दे नाल। अच्छा ये जो बेपरवाह है ना, अल्लाह ना करे किसी का मन उस बेपरवाह के साथ अटक जाए। बस मेरी दुआ है आप सब के लिए, क्योंकि वो होता है ना ज़िंदगी में, इंसान कहता है कि यार मैं तो इतनी परवाह कर रहा हूँ, मैं अभी ख़ुद से ही कहता है मैं तो इतना ख्याल रखता हूँ, मैं तो इतनी परवाह करता हूँ, लेकिन ये जो जिस बेपरवाह के साथ मेरा मन अटक गया ना, बस कुछ ना पूछें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
1: क्या हाल है सलाम भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन
1: आप? पुरानी इसमें मतलब कुछ कुछ महीने वाली पुरानी इसमें।
0: अच्छा चलें, पुरानी लिसनर का नाम क्या है?
1: आप थोड़ा सा गेस कर लीजिए।
0: थोड़ा सा क्या
1: गेस कर लीजिए?
0: अच्छा गेस कर लूँ मैं? यार एक्चुअली ना इसने चाय इतनी मज़े की पिलाई है कि मैं इसके चाय के उस शहर में डूब गया हूँ इस दिल की ना, तो इस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। गैस तो दूर की बात है। हम पता क्या कहेंगे, चाय बना ए खूब अदील, सबसे अच्छी चाय अदील की। अच्छा कौन बात कर रही है? माय नेम इज सॉरी
1: चकवाल।
0: यू आर फ्रॉम चकवाल? ओके मैं पहुंच गया हूँ करीब करीब। आपको सोटी खेल रही है मेरे साथ? यू आर फ्रॉम चकवाल और मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन नाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये पता चल गया आप चकवाल से कॉल कर रही हैं।

0: हाँ मैंने खुद बता दिया।
1: नहीं आपने नहीं बताया, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से बताएं।
0: आप खुद तो कहते हैं दिल वालों की बस।
1: हाँ, दिल वालों की
0: और
1: बस में
0: बच्चों
1: दिल
0: के
1: वाले
0: साथ
1: आ गए। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, हम लोगों के नाम नहीं पूछते, हम कहते हैं चलो जी दिल वालों की बस में दिल वाले आ गए, और
0: ये भी सही है
1: है ना।
0: वैसे।
1: अच्छा मुझे ये बताओ,
0: बिल्कुल
1: हम दूसरों को जज क्यों करते हैं? इंसान को दूसरों के जो रवैये हैं, खुद से उसको इंटरप्रेट करना क्यों शुरू कर देते हैं? उर्दू में, और आसान उर्दू में कहते हैं, तशरीह करना क्यों शुरू कर देते हैं हम?
0: हाँ वैसे ये सच है, मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही हूँ
1: आप भी
0: ऐसा
1: करती हैं
0: होता
1: ऐसे?
0: है। नहीं अलहमदुल्ला कोशिश करती हूँ, देखिए हो सकता है कई जगह करती हूँ, मैं ये नहीं कहती इंसान को सही होता है तो, लेकिन ये है कि कई जगह कर भी जाती हूँ ऐसा नहीं है, कोशिश करती हूँ। देखिए कोशिश करने से क्या हो सकता,
1: चलिए ये अच्छी बात है, आप एहसास तो करें ना इस बात का कि कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। वैसे करते हैं हम सब हैं,
0: हाँ
1: करते हैं हम सब हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमें ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं ना कि नहीं मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि नहीं मैं किसी को जज ना करूँ, किसी के कपड़ों पे, किसी की तालीम पे, किसी के रहन सहन पे, कहीं ना कहीं हम बैठते हैं गुफ्तगू का महवर हमारे लोग, दूसरे लोग जो हमारी महफिल में नहीं होते ना, वो लाजमी होते हैं। ऐसा ही है ना
0: और आप
1: मैडम?
0: बताओ ना। जी, हमारे यहाँ सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लाइक सब बात कर रही ना, तो अगर मुझे कुछ लेगा ठीक है, बाद में मेरे बारे में ये तो मत जरूर करें या आगे खुद ही समझें, तो
1: मैं समझ गया,
0: ऐसा नहीं
1: खाली
0: करना
1: जगह पर करी
0: चाहिए,
1: है।
0: ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप की लाइफ में क्या है और क्या है, और वो किस इंसान को सेंस से कांटेक्ट कर रहा है, इसको क्यों कॉन्टेक्ट करते हैं ठीक है, माने खुदा बखुदा जैसे मेरा अपने आज एक आज अगर आपको कभी तो वो बताएंगे कि
1: आपकी आवाज़
0: कैसे
1: ना, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मुझे लगता है आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही है, सिग्नल का कोई इशू है।
0: अब आ रही है,
1: हाँ अब आ रही
0: अब
1: है।
0: आ रही है।
1: जी, आप बोलिए, छुप के कॉल कर रही हैं लग रहा है।
0: नहीं,
1: अच्छा
0: शायद आपका आवाज कम आ रही है।
1: हाँ अब आ रही है, हाँ बताइए।
0: मैं कह रही हूँ ना कि मेरे साथ एक आज एक पर्सनल कॉन्टेक्ट में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, कभी आपकी जिंदगी में मौका मिले, नहीं तो जाते ही है कहीं ना कहीं, इंसान है दुनिया गोल है, लेकिन कभी मिल जाए तो आप उनसे जरूर पूछिएगा कि ये जो फिगर आ रहा है ठीक है, वो कैसी लिस्टनर है, तो फिर वो आपको खुद
1: नहीं
0: बताएंगे,
1: नहीं माशाल्लाह, आप
0: क्योंकि
1: बहुत अच्छी
0: मुझे
1: लिसनर हैं, मुझे अंदाज़ा हो गया है।
0: जी, लेकिन वो मैंने एक चीज अपनी जिंदगी से सीखी है भाई, आप ना दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना या किसी को जज करना, किसी के बारे में उल्टा सोचना ये छोड़ दें, तो
1: बिल्कुल ठीक,
0: आपकी अपनी जिंदगी पे सुकून हो जाती है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, चलें ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपकी इस बात पे एक बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने कहा जी आप एक काम करें कि आप लोगों को डिस्कस करना छोड़ दें, लोगों को जजमेंट करना छोड़ दें। अच्छा, इस सोशल मीडिया के दौर में ना, एक चीज़ जो बड़ी ही एक जिसे कह लें कॉमन है हमारे रवैयों में, सपोज़ अगर कोई बंदा पोस्ट लगाता है, कोई बंदा अपनी तहरीर लिखता है, कोई बंदा अपनी राय इजहार राय करता है सोशल मीडिया पे कहीं पर, अच्छा अब लिखने वाला जो है वो अपने एक अंदाज़ में लिख रहा है, और उसका अंदाज़ क्या है, इवन दो मैं कल एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है उनसे ये बात कह रहा था कि इस सोशल मीडिया के दौर में हम जब किसी को मैसेज करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग मुझे सिर्फ सुन रहे होते हैं। अच्छा वो आप सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, आप कह कुछ रहे होते हैं, अगला बंदा समझ कुछ रहा होता है, आपकी नीयत कुछ होती है, अगला बंदा समझ कुछ रहा होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपन डिस्कशन करें, खुल के दिल की बात करें, अपने गिले शिकवे जो है ना, जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपका ताल्लुक है, जिससे आपकी निस्बत है, जिसको आप कुछ समझते हैं, उसके पास बैठ के उसको सुने और उसको सुनाएं। ये जो हम मैसेजेस के ऊपर बात करते हैं ना, मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि हमारी 99% गलत फहमियाँ जो है ना वो इस मैसेजेस की वजह से होती हैं। तो इसलिए आपके अगर कोई भी इशू है, चाहे फैमिली में है, दोस्तों के साथ है, अपने किसी करीबी के साथ है, किसी के भी साथ है, तो आप उनसे ना बात करें, कम्युनिकेट करें, उसको अपना मैसेज उसके कानों तक पहुँचाएँ, उसकी बात सुने, उसके सामने बिठा के। तो ये बड़ा मिसअंडरस्टैंड होता है। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया पर कोई अपनी राय देता है, कोई अपनी अपनी कोई तहरीर लिखता है, और लिखने वाला बेचारा अपने एक ट्रांस में होता है, अपनी एक सोच में, ख्याल में, अपना एक उसका मिजाज होता है, उसकी अपनी एक नीयत होती है, पढ़ने वाला कमाल होता है, उसके नीचे ऐसे ऐसे कमाल के वो मतलब अपनी इजहार राय दे रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि सारी दुनिया फ़िलासफ़र हो गई है, सारी दुनिया दानिश्वर हो गई है। तो खुदारा किसी को भी कमेंट करने से पहले किसी भी चीज़ को पहले परख लिया करें, सोच लिया करें। अचानक से इतना हाइपर होना, गुस्सा दिखाना, ये जो है ना, ये हमारे रिश्तों को भी कमज़ोर करता है, हमारे अपने आप को भी कमज़ोर करता है। सो अभी एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे, आप लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको शामिल करूँगा राइट आफ्टर दिस ट्रैक। और आई एम गोना प्ले, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लाइवली लिसनर। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वेरी हार्ड टचिंग वॉइस एंड वेरी हार्ड टचिंग ट्रैक इज कॉल्ड हाल ए दिल फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लवली एंड लाइवली लिसनर। हियर वी गो।

Can we talk about how glycolic acid was every

0: हसरत दिल क्या बात है, बहुत खूबसूरत सी आवाज़ सावल साहब की आप इसमें ट्रैक सुन रहे थे। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। आई डोंट नो, कुछ गाने और कुछ कलाम इतने खूबसूरत होते हैं, और गाने वालों का भी क्या कमाल होता है, और कुछ ऐसे खूबसूरत। मैं ऐसे ही कहूँगा कि ऐसे हीरे होते हैं, ऐसा खूबसूरत गाने वाले होते हैं जो मौसीकी को समझते हैं, जो सुर को समझते हैं, जो सुर कैसे लगाना है इसको समझते हैं, और उसका सही हक अदा करना समझते हैं। लेकिन शायद उनको वैसे पज़ीराई नहीं मिलती जो उनका हक है, जो वो डिज़र्व करते हैं। राइट जनाब, FM 101 के इस प्लेटफॉर्म से आप आवाज़ सुन रहे हैं फरहान खान की। आपका हमारा साथ होता है जुमे के रोज प्रोग्राम द लेट नाइट शो विद फरहान खान। आप लोगों की कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। आज का जो हमारा शो है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि हम जजमेंटल क्यों हो जाते हैं, हम फैसला क्यों कर बैठते हैं, हम एक मिनट में राय क्यों कायम कर लेते हैं, हम लोगों के बारे में सोचना अपने पास से गुमा क्यों बना लेते हैं, ग़लत फहमियाँ क्यों पैदा कर लेते हैं। कभी कभी जिस शख्स को हम गलत समझ रहे होते हैं, इनफैक्ट वो गलत नहीं होता। हम गुस्सा क्यों करते हैं वैसे? कुछ लोगों का गुस्सा जो है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है। इतना ख़तरनाक होता है वो सिर्फ अपनी आँखों से इस तरह देखते हैं और अगले दिन जान कट लेंदे ने। चलें, कोई बात नहीं, गुस्सा सहने वालों की भी कमाल है ना, वो गुस्सा सह भी जाते हैं। क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है ना, जहाँ प्यार होता है, जहाँ ताल्लुक होता है, जहाँ आपने निभाना होता है ना, वहाँ आपने बर्दाश्त भी करना है, वहाँ पे आपने गुस्सा भी पीना है, क्योंकि मोहब्बत है ना। सो मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब आप किसी को अपनी मोहब्बत में लेते हैं ना, या किसी से मोहब्बत करते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर अपनाना है, उसके गुस्से को, उसकी मोहब्बत को, उसकी नाराज़ी को, उसकी चाहत को, हर चीज़ को आपने अपनाना है। तो इसीलिए गुस्सा करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं मुझे कि गुस्सा ज़रूरी होता है। एनीवेज जनाब, आप लोगों की कॉल्स भी चल रही हैं और देखते हैं, लेट्स सी हु इज विद अस। जी वालेकुम सलाम,
1: आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर?
0: मैं कहता हूँ आपकी आवाज़ गूंज रही है पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी।
1: पाकिस्तान से इंटरनेशनल
0: ये 12 से पहले भी होता है।
1: ओके, सही। मैं रावलपिंडी से डॉक्टर सादिया वान।
0: क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से?
1: मौजू के हवाले से
0: सोचें
1: कि हमें वैसे किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए।
0: नहीं नहीं, अच्छी राय कायम कर सकते हैं हम।
1: देते हैं मेरे बारे में अक्सर लोग जो है ना कर लेते हैं।
0: अच्छा, क्या करते हैं आपके बारे में राय कायम?
1: नहीं, इसको ये नहीं अच्छा लगता। हालांकि वो मतलब जान बूझ कर ये इसको नहीं अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। नहीं, इसको ये
0: आपसे डरते होंगे ना,
1: ये करना है जी,
0: आपसे डरते होंगे ना लोग, इसलिए कहते होंगे।
1: हाँ ये तो है, बस होती है ना।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपना बड़ा रोब रखा होता है घरों में, वैसे भी हमें बच्चों को भी डरा रहे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आंखें दिखाते हैं ऐसे।
1: जी बिल्कुल सही बात
0: है ना, बड़े खौफनाक लोग। अच्छा, होते बड़े प्यारे हैं, अंदर से बड़े मीठे होते हैं, बड़े नरम होते हैं, लेकिन अपना खौफ और जल वो जो ना जलवा जल्लाद वाला वो बड़ा दिखाते हैं ना। आप भी वैसी हैं?
1: नहीं, मैं जो है, मैं तो बच्चों से बोल के जो है ना, मतलब बच्चे अक्सर
0: नहीं, नहीं, मैं बच्चों से मुराद वो बच्चे नहीं कह रहा, मैं बच्चों से मुराद घर में जो लोग होते हैं वो लोग। मैंने तो अज़रा तफ़ज़ुल आपको कहा है,
1: मेरे अपने जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी फ्री हो जाते हैं मुझसे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके बारे में लोग क्या राय कायम करते हैं कि आप जो है बड़ी गुस्से वाली हैं, आप माइंड कर जाएंगी और आप जो है ना आपका मिजाज बड़ा तेज है ना, यही?
1: नहीं ऐसा है कि ये कहते हैं कि गुस्से वाली है, मतलब
0: अच्छा अच्छा
1: ये कहते हैं, मगर ये है कि कहते हैं नहीं, मतलब जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, कहते नहीं नहीं कर लेगी ना, बस ऐसे जैसे जबरदस्ती होकर कहते हैं एक किस्म का कुछ चीज थोप देना, काम थोप।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया चलें, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जनाब, हमारे साथ रावलपिंडी से कॉल करी थी। अच्छा, कुछ लोग ना इतनी मासूमियत से बैठे होते हैं ना, ऐसी मासूमियत से, और बड़े मासूम लगते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने ऐसा रोब और दबदबा डाला होता है ना लोगों पे, उनसे बोला भी नहीं जाता। अच्छा, एक और ट्रैक मैं चलाने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ अगेन फाइनेस्ट, आई डोंट नो, ऑटोमेटिकली ये जो ट्रैक है ना लाइनअप हो चुका है, तो इसको मैं चलाऊँगा, आप लोगों की कॉल्स को मैं इसके बाद शामिल करूँगा, बैक टू बैक सावल साहब की म्यूज़िक ऑटोमेटिकली, यू नो ऑलग्रिदम्स का तो आपको पता ही है ना सबको। ओह, आई लव दिस।

0: All right, now welcome back to the show. एक कॉलर हमारे साथ हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ, फिर हम बढ़ेंगे आप लोगों के मैसेजेस की जानिब। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कराची से परवीना आसिफ, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ फरहान, आपकी आवाज़ बता रही
0: हूँ। कराची कैसा है? कराची,
1: कराची का हाल भी आजकल बड़ा प्यारा है।
0: अच्छा,
1: वैसे तो
0: बिरयानी कैसी है कराची की? बिरयानी मिलेगी हमें?
1: बिरयानी लोग तारीफ करते हैं, मुझे बिरयानी नहीं पसंद आती।
0: फिर आप ऐसा करें ना, लाहौर में आके कराची की बिरयानी खाएं, आपको बहुत स्वाद आएगा।
1: मुझे पता नहीं क्यों कहीं की बिरयानी अच्छी लगती नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगती है, तो सबसे इतनी तारीफ सुन सुनकर मुझे चढ़ होने लगी।
0: अच्छा, ये मसला है,
1: बस मुझे पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छी लगती उससे, उसके बजाय मुझे पुलाव अच्छा लगता है, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के बनता है ना, बड़ा टेस्टी होता है।
0: वाह वाह, ना करें मुझे भूख लगना शुरू हो जाएगी, बस कर दो,
1: खा लीजिए ना, खा लीजिए।
0: देखिए मैं अभी 20 मिनट तक तो कुछ भी नहीं खा सकता, क्योंकि अदीद जैदी साहब भी कुछ नहीं लेके आए मेरे लिए खाने के लिए।
1: ओए होए होए होए, ये तो
0: चाय का एक कप इन्होंने पिलाया है, तो वैसे ऐसा लगता है चाय के बाद दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है।
1: हाँ ये बात तो है, दिल चाहता है बिस्किट वगैरह भी होते।
0: वो हमारे एक दोस्त है ना, उन्होंने लिखा होता है कि चाय जो है ना अशरफ और मशरूबात है। आपकी मोहब्बत है, मुझे बताएं आप। हाँ नहीं, मोहब्बत है, आप मुझे बताएं, आप जजमेंटल होती हैं, फैसले कर लेते हैं लोगों के बारे में?
1: बहुत हद तक नहीं, बहुत हद तक नहीं करती हूँ मैं, जब तक मेरी कई दफ़ा मुलाकात ना हो जाए या मुझे उनसे मेल जोल या लोगों के से पता चलता है कुछ थोड़ा बहुत, तब मैं कोई राय कायम करती हूँ, एकदम देखते ही नहीं कर लेती। हाँ वो बात अलग है कि कोई बहुत ही बेसुरा और बदतमीज किस्म का आदमी हो तो फिर
0: ये बेसुरा, बेसुरा और बदतमीज को कैसे आप डिफाइन करती हैं, उसकी क्या होगी पहचान?
1: मतलब ये कि एक छिछोरी बात कर
0: लूं, हम बेसुरा उसको कहते हैं ना, आज चूंकि क्लासिकल प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर क्लासिकल साया हुआ है आज ना मुकम्मल।
1: वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
0: तो मुझे ना, हम बेसुरा उसको कहते हैं जिसको सुर लगाना नहीं आता, जो गा भी रहा है ना, भाग भी रहा है, दौड़ भी रहा है, लेकिन हम उसको बेसुरा, आप बेसुरा किसको कहती हैं?
1: मैं इसलिए ये बात इसलिए कहती हूँ फरहान, उसको कहती हूँ जिसकी गुफ्तगू में कुछ होता ही नहीं है सिवाय गंद खाने के और बदतमीजी के, इंतहाई बेसुरा और बदतमीज आदमी हो या औरत हो, जिसका मुंह खुलते ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप की खातून या साहब है।
0: अच्छा मैं बताऊँ, कराची वालों की ना मुझे जो बदतमीज कहने का अंदाज है ना, उससे लगता ही नहीं लिख के कोई बदतमीज हो, आप इतना खूबसूरत बदतमीज बोलते हैं ना कि किसी को आप बदतमीज भी कहेंगे ना तो वो बतमीज नहीं लगेगा।
1: नहीं फरहान, बड़े बड़े पढ़े हैं सच में, बड़े बड़े तो आप लोगों जैसे नहीं है लोग सारे के सारे, हमारे आरबीएस तो बहुत ही प्यारे हैं, सबको अल्लाह जीता रखे। फरहान की तो कहीं भी मुझे तस्वीर अभी देख ली थी मैंने, एक फंक्शन में थे ना,
0: मैं तो सारा दिन फंक्शन में ही था।
1: नहीं जो लगाई हुई थी फेसबुक पे,
0: जी जी जी जी जी,
1: हां जी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैंने कहा माशाल्लाह फरहान हमारे हर जगह बहुत मशहूर है भाई।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया,
1: कामयाबियों में और तरक्की के फरहान, खुश रहो आप, आबाद रहो।
0: क्या सुनाएंगे आज?
1: मैं आपको थोड़ा सा चलिए सुना देते हैं, इसमें आज इरादा था नहीं, सुनाती हूँ,
0: सुना दे
1: एक सेकंड। अभी एक शोर सा जी, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा ऐसा ये सबब कहीं, इससे पहले भी हो चुका है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है और ढूंढता है कहीं, जो यहाँ से कहीं ना जाना था, जो यहाँ से कहीं ना जाता था वो यहाँ से चला गया है कहीं।
0: अरे वाह,
1: हम किसी के नहीं जहाँ के सिवा, ऐसी वो खास बात क्या है कहीं, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से खो गया है कहीं। इतनी वहशत है दरमियान हुजूम के, इतनी वहशत है दरमियाने हुजूम, सॉरी, इतनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं।
0: अरे वाह,
1: और आखिरी शेर देखिएगा कि जिसको देखो गया हुआ है कहीं, तो पढ़ लिया था चले। मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मुझसे ये शख्स पहले भी मिल चुका है कहीं।
0: अरे वाह,
1: बातें याद अच्छी याद रह जाती हैं या बुरी याद रह जाती हैं, तो बस ये है आपसे बात करके तो मुझे यकीनन बहुत खुशी होती है।
0: चलिए बहुत शुक्रिया जी, सेम हियर,
1: जीते रहें, आबाद रहें, खुश रहें, आप भी, आपके सब सुनने वाले भी, और जैदी भाई भी, एक कप और अच्छा सा बना के पिला दें आपको।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। اور جناب کراچی سے ہمیں کال تھی، تھینک یو سو مچ، آپ جب آتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آتی ہیں۔ ول جناب 11:45 ہو جاتے ہیں، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان۔ 101 انٹرنیشنل کی اس آواز کو پاکستان بھر میں سنا جا رہا ہے۔ ملک وسیم عوان منڈا سیالکوٹی کہتے ہیں جی السلام علیکم، اور آپ کی ٹیم کو سننے والوں کو سلام کہتے ہیں، بہت شکریہ جی۔ نذیر ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ نذیر آپ کا بھی پروگرام میں شامل ہونے کا، اور ایم رضا کا بھی بہت شکریہ۔ زاہد حسین بھائی ہمیں سن رہے ہیں آل دا وے، یہ بھی سیالکوٹ سے ہمیں سن رہے ہیں۔ اسد جی اس وقت ہمارے ساتھ سیالکوٹ میں ہیں، یہ سیالکوٹ ایف ایم 101 کے ڈیوٹی افسر ہیں اور وہاں پہ اس ٹائم بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں چائے پلائی تھی، زیادہ سی ملائی اور 10-11 جو تھی نا وہ الائچیاں ڈال کے، مطلب آپ نے شکل اتنی بری بنائی ہے، آپ دیکھیں ہم نے پی ہے وہ چائے۔ لوگ شکل بری بنا لیتے ہیں اس چائے کا تصور کر کے۔ اچھا جی، معصوم لڑکی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں جس سے محبت ہو وہ سننا ہی نہیں چاہے۔ اچھا جی، جس سے محبت ہو وہ سننا ہی نہیں چاہے تو کوشچن مارک، جس سے محبت ہو وہ سننا ہی نہیں چاہے تو۔ اچھا بڑا مشکل سا سوال آپ نے کر لیا، تو نہ سنائیں بھائی، اگر ایک بندہ نہیں سننا چاہ رہا تو آپ کیوں زبردستی اس کو سنانا چاہ رہے ہیں، مطلب کیا کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں سننا چاہ رہا، مطلب وہ آپ کیا، مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، وہ نہیں سننا چاہ رہا تو آپ مت سنائیں، تو زبردستی تو نہیں کچھ کر سکتے نا آپ۔ ہاں اگر آپ سنانا چاہ رہی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ سنانا ضروری ہے تو پھر کوشش کر لیں، ادروائز کیا کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، زبردستی تو کی نہیں جا سکتی۔ حماد اللہ ملک خیل ہمارے ساتھ ہیں، اور حماد اللہ ملک خیل کہتے ہیں کہ جی کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کرو کہ وہ تم سے بات کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے چپ چاپ رو پڑے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی کسی کے لیے نہ روئے بس۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام فرحان بھائی، کیسے ہیں
0: سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: میں شمیم فرام کراچی۔
0: جی آج تو کراچی والے چھا گئے ہیں، ویسے کیا بات ہے کراچی والوں کی۔ جی شمیم بھائی کیا کہیں گے؟
2: میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا میں فرسٹ ٹائم جب پنجاب آیا تھا نا، پنجاب میں ہمارے رشتے دار ہیں تین جگہوں پر نا، ایک گوجرا، ایک لاہور، ایک فیصلہ آباد۔ ٹھیک ہے، تو گوجرا فیصلہ آباد سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا شہر ہے گوجرا نا، کچا گوجرا پکا گوجرا، ہاں تو وہاں پر جب میں آیا تو مجھے ایک چیز نے بڑا حیرت زدہ کیا، تو میں دو چار ہی بات کرتا تھا وہاں کے مقامی لوگوں سے، تو بولتے تھے آپ کراچی سے آئے ہو، تو میں نے کہا آپ کو کیسے کیچ کر لیتے ہو، بولتے آپ لوگ یہ نا زیر زبر کا بڑا خیال کرتے ہو، بولتے
0: بالکل ایسے ہی،
2: تو بولتے یہ چیز ہم کو ڈیفائن کر دیتی کہ آپ یہاں کے نہیں ہو۔ چل یہ تو ہو گئی۔ اچھا وہ ہے مرزا غالب کہ کوئی امید بل نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس کو میں نے پیروڈی کیا ہے۔
0: اچھا
2: پیروڈی سمجھتے ہیں؟
0: جی جی آج سمجھ جاؤں گا مزید۔
2: اچھا اللہ کرے خدا کا خواستہ۔
0: اچھا
2: عید پہ بھی یہ گھر نہیں جاتی، پوری فیملی کو یہی ہے بلواتی۔
0: اچھا
2: میری ساس میں خوش خوراک بہت، چار چھ سے کم روٹیاں نہیں کھاتی۔
0: آپ کی ساس سن رہی اس وقت؟
2: پر لوگ سزا لی ہوں۔
0: اچھا
2: یعنی اللہ کے پاس؟
0: جی جی جی جی،
2: اس لیے میں بے لڑک باتیں کر لوں۔
0: اور بیگم کدھر ہیں؟
2: بیگم مجھ سے دور ہیں کافی۔
0: اچھی بات ہے، بلکہ آپ ایک کام کریں تھوڑا سا اور دور ہیں آپ، تھوڑا اور دور
2: نہیں نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ فرحان بھائی جو ہے میرے لیے حفظ مات تقدم کے طور پہ،
0: حفظ مات تقدم کے طور پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ محفوظ جگہ پہ چلے جائیں، آپ کے لیے محفوظ جگہ پہ زیادہ ہی عافیت ہے۔
2: افسوس ہے چار بہتر،
0: اس کا مطلب ہے آپ نہیں ٹلنے والے، آپ نہیں ٹلنے والے، یہ خطرہ آپ مول کے رہیں گے، چاہے جان کی بات سے۔
2: میری ساس خوش خوراک بہت، چار چھ سے کم روٹیاں نہیں کھاتی، کھاتی ہے کباب اور بریانی، کباب اور بوٹیاں بہت
0: کھاتی ہے،
2: کباب اور بوٹیاں بہت، کہتی ہے یہ بریانی کیوں ادھر نہیں آتی۔
0: اچھا
2: اب یہ شعر جو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا گہرا ہے، ٹھیک ہے،
0: گہرائی میں جانا پڑے گا۔
2: ہاں نا
0: اچھا چلیں،
2: سوئمنگ سوٹ ہے آپ کے پاس؟
0: جوتے اتار رہا ہوں سر میں۔
2: नहीं स्विमिंग सूट है?
0: नहीं नहीं सर, मैंने जूते उतार लिए हैं, बस जूते उतारने काफी होते हैं स्विमिंग के लिए।
2: ओके अच्छा, तो मेरा ससुर मुझे, मेरा ससुर मुझे बहुत अपना अपना सा लगता है।
0: अच्छा,
2: क्योंकि इज्जत उसकी भी घर में नजर नहीं आती।
0: अच्छा,
2: मेरी सालियां हैं पटाखा मगर, मेरी सालियां हैं पटाखा मगर, बेगम में उनके आगे बुझी बुझी सी नजर आती है। और सालियों से, और सालियों से बेसबब रब ना बढ़ाओ शमीम, सालियों से बेसबब रब ना बढ़ाओ शमीम, शर्म तुमको मगर नहीं आती
0: और आनी भी नहीं है। शमीम साहब बहुत शुक्रिया, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब, थैंक यू,
2: गॉड
0: ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वाल जनाब शमीम साहब थे हमारे साथ, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम फरहान साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, कौन है मेरे भाई?
3: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी सलमान भट्ट साहब, क्या कहेंगे?
3: ये है कि अल्लाह की खास नायत होती है कि इंसान दूसरों को परख लेता है, और मेरे ख्याल में जो पब्लिक डीलिंग करते हैं ना, मैं भी पब्लिक डीलिंग करता रहा हूँ, तो अल्लाह ये समझ दे देता है, पता चल जाता है कि बंदे किस तरह के, और अल्लाह बचा लेता है
0: ऐसे लोगों से।
3: अल्लाह का शुक्र है, इतनी अल्लाह ही पहचान।
0: हम लोगों से बचाने की तो बात ही नहीं कर रहे जी, हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों के बारे में राय कायम कर लेते हैं, जबकि हमें हमें पता, हमें उस, हमने पिक्चर का एक रुख देखा होता है या सफा एक पढ़ा होता है।
3: हाँ, ये भी मैंने फरहान साहब में शायद मुझे कोई बात बताता है, मैं कहता हूँ तो आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं पहले उसकी भी सुनूंगा, तो फिर मैं कोई राय कायम करूंगा, इस तरह नहीं। इस तरह तो जो बंदा आपके पास आके पार्टी बैठी है वो कहेगी मैं ही सही हूँ, मैं किसी के पास बैठा हूँ मैं कहूँगा मैं ही सही हूँ,
0: बिल्कुल ठीक,
3: दूसरा गलत है।
0: बिल्कुल,
3: जब तक आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे आप कह सकते हैं? ये अक्सर आप किसी ट्रांसपोर्ट वाले के पास हो कहेंगे यार वो मेरी एंज हो गया थी, वो मेरे घर वाले चले गए, ऐसे मैं ही अच्छा हूँ। मैं कहा नहीं यार, पहले दोनों पार्टियों की सुनेंगे फिर पता चलेगा।
0: सर जबरदस्त, क्या बात, बहुत खूब।
3: और आप ठीक है?
0: बिल्कुल सर, मैं जबरदस्त।
3: ये है कि मैंने तो जब से अपने मतलब अपना वो इस्लाह करनी शुरू की है ना, अब दूसरों को सोचते हैं, अपना अपनी इस्लाह, अल्लाह पाक हमें, हम सबको नेकी की हदायत दे, और जो जो हमने कमियां बताई हैं वो दूर करने की हिम्मत कर दे।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब, थैंक यू सर, सर बहुत शुक्रिया। वो कहता है बुरे बंदे नू लबन में टुरिया, बुरा लभ्या ना कोई, बुरे बंदे नू लबन टुरिया, बुरा लभ्या ना कोई, जद मैं अंदर चाती मारी मैं तो बुरा ना कोई। आए जनाब, वक्त हमें बता रहा है 11:54 हो जाते हैं और वक्त रुखसतान पहुंचा है, और बहुत जल्द हमने आपसे इजाज़त भी चाहनी है, लेकिन एक मैसेज है उसको मैं पढ़ता चलूँ। किसका मैसेज है? मासूम लड़की हमारे साथ है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, इट्स मी अस्मा। ब्रदर मैं तो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले सकती, लोगों को क्या जज करूँगी मैं, और मैं एक बात अगर अपनी बातों बताऊं तो मैं हमेशा दिल से डिसीजन लेती हूं, जहां पर दिल जाए वहां तो मैं कभी दिमाग को इन्वॉल्व करती ही नहीं हूं। अच्छा जी, चलें ज़बरदस्त जी, ये तो अच्छी बात है, अगर आप खुद से डिसीजन ले सकती हैं और आपको लगता है कि दिल से लेती हैं और सही डिसीजन है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि जी मैं सही डिसीजन नहीं ले सकती, दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए कि आप सही डिसीजन लें और आपके लिए बेहतर हो जो भी हो। थैंक यू सो मच मासूम लड़की। सूफी दुआ इन्फॉर्मेशन, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, क्या मज़े का नाम है, कैसे हैं आप भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुबशर हसन हमारे साथ हैं, योर वॉइस इज़ जस्ट लाइक अ यंग बॉय। आहा, अच्छा आपके लिए एक मिठाई का डब्बा भेजूंगा मैं। हमादुल्ला मलखेल, थैंक यू सो मच। और बेपरवाह से मन अटक जाए तो क्या करें इंसान, सवाल है जी क्या करें। मैं वैसे ना एलिजिबल नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, राइट नो, मुझे ऐसे लगता है सवाल बड़ा मुश्किल है कि अगर किसी बेपरवाह से आपका मन, मैं पूछता हूँ जी, एक बड़ी फ़िलासफ़र मेरे साथ, एक दानिश्वर, एक राइटर हैं, उनसे पूछता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट शो में बताऊँगा, मुझसे ज़रूर ये सवाल कीजिएगा कि अगर किसी बेपरवाह से आपका मन अटक जाए तो क्या करें इंसान। ये सवाल है, इस सवाल को मैं आज यहाँ पर ही छोड़े जा रहा हूँ, नेक्स्ट शो में जब आऊँगा तो आपने मुझे याद करवाना है कि कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, फिल वक्त मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। एनी वेज जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और एक लास्ट कॉलर लेंगे फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे क्लोजिंग की जानिब।
4: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम
4: सर। बोधी जट सर, विजय कंदर सर।
0: ओए होए होए बोधी जट, असा किसी दिन बोधी जट साहब रावि दे कंडे आ ही जाने।
4: बिस्मिल्ला सर, वेलकम है सर, तुहानू असी दे सर बिल्कुल तुहाडा इंतजार करदे रहे ने बस, तुसी क्या सी असी आवांगे जे सर, गड्डियां ते नजरां थक गईयां सर, तुहाडा इंतजार कर रहे।
0: मैं को 2-250 बंदे नु किया वैसे, चलो
4: चादर ला के सोई दे, ठंड लग गई।
0: अच्छा
4: जी सर,
0: ना करो।
4: हाँ जी सर, इस टाइम समझ लो कि एडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मजा आ रहा, यकीन मन्नो ते साफा लिया ये ते लेते हैं मर्जी से।
0: क्या बात है सर, क्या जबरदस्त मंजर कशी की थी तुसी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इतों ना साइन ऑफ करके सीधा तुहाडे कोल आ जाऊं।
4: बिस्मिल्ला सर, आओ तुसी दसो सर, असि तुहानू अगों भी आ जाने सर लैण।
0: अच्छा, कोई मुश्किल है, राह च पानी भी आंदा है?
4: नहीं नहीं सर, पानी नहीं आंदा, लेकिन ये है कि रस्ते दे विच जरा पैलियां पूरियां बजीजियां, रस्ता जरा शमशान है, ऐ ही है।
0: कोई गल नहीं सर,
4: कोई पानी पूरी
0: सुनसान रस्ता है, पैलियां ने जनाब। बड़ी मेहरबानी, सलामत
4: सर, खैर सलामत रहो, पूरी टीम सलूट से पाकिस्तान सर जिंदाबाद।
0: ओके जनाब, जट जी हमारे साथ है, और मैंने भी चाहनी आपसे इजाज़त, क्योंकि घड़ियां मुझे ये कहती हैं कि बस फरहान बस करते हैं, क्योंकि अब वक्त रुखसतान पहुंचा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की कॉल्स का, आप लोगों के पैगाम का, आप लोगों के साथ का। शब के इस पहर में आप हमारे साथ रहते हैं, और दिल वालों की बस में इतने खूबसूरत अंदाज से आप आते हैं, आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। मुझे चाहनी इजाज़त आपसे इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। एक बड़ा मुश्किल सा सवाल मुझसे किया गया है, तो उस सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट शो में, फ्राइडे के शो में दूंगा, ट्यूसडे में मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन फ्राइडे के शो में आपको लाजमी दूंगा, कोशिश करूँगा, लेकिन आपने मुझे याद ज़रूर करवाना है, क्योंकि मैंने भी किसी से पूछना वो सवाल और उसका जवाब। सो टिल देन, अल्लाह निगेबान, फरहान खान साइनिंग आउट, अल्लाह निगेबान एंड लव टू ऑल।

0: रात के इस पहर में 12:10 हो जाते हैं और 22 अगस्त है 2026 है, मुझे आरजे के बी कहते हैं और आरजे के बी के साथ आपके साथ होता है हर जुम्मे की रात को 12 से लेकर 2 बजे तक।
1: जहां तस्वीर बनाने की खातिर लोग
0: पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और इस शहर में और इस शहर से बाहर जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, तमाम जहाद भरी समातों को, तमाम सुनने वालों को प्यार भरा, अद भरा, मोहब्बतों भरा, खलूस भरा, चाहतों भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। प्रोग्राम है 101 इंटरनेशनल और सुनते हैं आप हर जुम्मे की रात को 12 से लेकर 2 बजे तक मेरे साथ और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ आपके साथ ये 2 घंटे रहेगा और 2 घंटे क्या होता है आपको मालूम है कि क्या होता है, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताए दूं कि कुछ खास नहीं होता, बस यही होता है आपकी बातें मेरी बातें, आपके दिल की बातें मेरे दिल की बातें, कुछ आपकी पसंद का म्यूजिक, कुछ मेरी पसंद का म्यूजिक, कुछ एक आध मौजू, कुछ एक आध सवाल और कुछ एक आध जवाब, कुछ आपकी कॉल्स, कुछ आपके मैसेजेस, कुछ आपके कॉमेंट्स। यही सब होता है इस प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही होगा और ये जो गजल मैंने अभी आपको सुना रहा हूँ, ये जो लगाई है मैंने अब दोबारा से प्ले करने लगा हूँ और ये मेरी बड़ी फेवरेट गजल है और पिछले इस पूरे हफ्ते में मैंने इसको बहुत सुना है और अभी मैं जैसे ही रेडियो पहुंचा तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को बोला कि ये जो गजल है ये फौरन से डाउनलोड करके इसको आप मेरा जो फोल्डर है उसमें रखिए ताकि मैं आज आगाज इसी से करूँ।

आहा, सोना बना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आपने जागना है। आ रही है तो सो जाना यार। नहीं आ रही तो मैं आपका साथ निभाऊंगा। अगर आप समझते हैं कि मैं आपको लोरी दे के सुलाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपके कानों में गुदगुदाहट जरूर होगी लेकिन लोरी नहीं होगी।

रॉकी जी कहता कुछ ऐसा है शायर के गुज़िश्ता शब जो हस्ती बरफराज़दार थी मैं था, गुज़िश्ता शब जो हस्ती बरफराज़दार थी मैं था। कहता है कि पिछली रात को जो तख्ता-ए-दार पे थी हस्ती वो मैं था, तो मुझे तख्ता-ए-दार पे लटकाया जा रहा था और मुझे फांसी दी जा रही थी, और वो जो जिसको फांसी दी जा रही थी ना वो मैं था।

और फिर अगले दिन जो अखबार की सबसे खास सुर्खी थी, जो सबसे ज्यादा अहम सुर्खी थी, जो सबसे बड़ी सुर्खी थी, जो शोकत अखबार थी, वो मैं था। फिर अगले दिन जो सुर्खी शौकत अखबार थी, मैं था। गुज़िश्ता शब जो हस्ती बरफराज़दार थी, मैं था।

और वो फांसी का फंदा ही सिर्फ काफी नहीं था, बस मुझे सिर्फ इतना याद है कि जल्लाद भी था, तलवार भी थी और मैं भी था। वहां कुछ लोग थे, इल्जाम थे, बाकी अंधेरा था, बस इतना याद है जल्लाद था, तलवार थी, मैं था। जहां तस्वीर बनवाने की खातिर लोग आते थे, वहां बस मंजर तस्वीर जो दीवार थी वो मैं था। कि लोग जहां तस्वीर बनाने आते थे और उनने तस्वीरें बनाई, उसके पसे पर्दा जो दीवार के ऊपर अक्स था वो मैं था।

अरे अरे अरे अरे, कहता है खफा मत हो मेरे बदले वहाँ गुलदान रख देना, जहाँ मेरी तस्वीर कभी हुआ करती थी वहाँ गुलदान रख देना। तेरे कमरों की जो चीजों में सबसे बेकार शय थी वो मैं था। खफा मत हो मेरे बदले वहाँ गुलदान रख देना अब, क्योंकि गुज़िश्ता शब जो हस्ती बरफराज़ दार थी वो मैं था।

वन ओवर इंटरनेशनल है जी, आप मेरे साथ है जी, मुझे आज ही के भी कहते हैं, 12:19 हुए चाहते हैं और आगाज आई थिंक सो अच्छा हो चुका है और 22 अगस्त 2026 शुरू हो चुका है और आप मुझे कॉल कर रहे हैं 0511111001 के ऊपर और उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट कर रहे हैं और फेसबुक के ऊपर कनेक्ट करने के लिए आप जा रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान के पेज के ऊपर, वहाँ आपको एक तस्वीर मिलेगी और उस तस्वीर के ऊपर आप कमेंट करके अपनी बातों का इजहार मेरे साथ कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको मौजू भी बताता हूँ जी कि आपका मौजू आज का क्या होगा जी, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ 4471 के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको एक और भी मैं बता देता हूँ 0519202540। अगर आपको 0511111001 कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपने मिलाना है 0519202540। मुझे आज ये भी कहते हैं, मेरे साथ रहिएगा।

तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा अब कुछ भी नहीं, मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना थी तुम्हें अक्सर, मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना थी तुझको अक्सर, मेरे कमरे में किताबों के सिवा अब कुछ भी नहीं। दिल का क्या है, दिल का क्या है, वो तो चाहेगा कोई बात करे, कौन सुनता है किससे कहिए, कौन सुनता है किससे कहिए, किससे बात कीजिए। अधूरे लफ्जों का बोझ जो आपके दिल के ऊपर है, अगर आपके दिल में कोई अधूरे लफ्ज हैं जिनको आप कहना चाहते हैं और आप कहते हैं कि किससे कहिए, कौन है, कौन सुनेगा मुझे आज, तो आज मैं हूं आपको सुनने के लिए। आपने मुझे सुनाने हैं अपने अधूरे लफ्ज, और वो लफ्ज जो आप कभी किसी को कहना चाहते थे, और कहीं आपकी कोई ऐसी लड़ाई हुई, कहीं आपका कोई किसी के साथ तल कलामी हुई, कहीं किसी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, कहीं किसी ने आपका बहुत ख्याल रखा और फिर बाद में आपको याद आया कि यार उसको तो गुड नोट्स के ऊपर कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, उसका थैंक यू तो कहना चाहिए था, एटलीस्ट उसको मैं शुक्रिया तो कह देता, लेकिन अगर आप कह नहीं पाए तो आज मुझे कह दीजिए। बताइए मुझे कि आपने कहाँ किधर कुछ अधूरे अल्फाज छोड़ दिए हैं, जिन अधूरे अल्फाज का आज भी आपको रिग्रेट है और आप सोचते हैं कि काश के वो अधूरे लफ्ज ना रहते और मैं कह देता। कोई भी अधूरा लफ्ज जो आप कहना चाहते हुए थे अपनी जिंदगी के अंदर और आप कह नहीं पाए, वो आज मुझे बताएंगे। वक्त और मौके की बेवफाई कभी अना आड़े आ जाती है, कभी खौफ आ जाता है, कभी ये गुमान होता है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है और बहुत कुछ अभी कहने को बाकी है। ये वाले दो लफ्ज बाद में कह देंगे, ये वाला जुमला बाद में कह देंगे, ये वाला पैरा बाद में कह देंगे, लेकिन वक्त निकल जाता है, गुमान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और फिर आपको लगता है कि क्यों नहीं कहा यार, क्यों नहीं बोल सका मैं, मुझे कहना चाहिए था। आपको लगता है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, लेकिन अचानक से आपको एहसास होता है कि यार वक्त तो सरक गया, बस अब तो कुछ बाकी नहीं है। मौका हाथ से निकल जाता है और फिर आपके पास जो बचता है वो सिर्फ काश बचता है। जिंदगी का वो कौन सा ऐसा जुमला था जो अगर आप किसी को किसी वक्त पर कह देते तो शायद आज आपकी जिंदगी ऐसी ना होती, कहानी कुछ और होती, कहानी कुछ और होती, जो कहानी अभी चल रही है ना ये वाली ना होती, कोई और कहानी होती। ये आपने मुझे बताना है, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन छुप के बताना है, ख्याल करना है कि कोई वो ना सुन ले जो अभी कहानी में मौजूद है। क्या ऐसी चीज खड़ी थी आपके और उसके दरमियान, क्या कोई डर था, या आपको गरूर था, या तकब्बुर था, या अना थी, या आपके अंदर खुदी थी, या आप कहते थे कि मैं क्यों कहूँ, वो क्यों नहीं कहता, आखिर वो क्या था, वो क्या था, उसके अंदर कौन से ऐसे हालात थे या कोई ऐसी चीज थी जिसने आपको रोके रखा, वो सब कहानी आज मैंने आपसे सुननी है। सुनाएंगे ना मुझे, एक फर्जी खत लिखते हैं आज उनके नाम, एक फर्जी पैगाम रिकॉर्ड कराते हैं आज उनके नाम। रात की खामोशी में भी अक्सर वही आवाजें आपको सुनाई देती हैं जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में शोर मचाती हैं, वो वही आवाजें होती हैं, वही जुमले, वही अल्फाज होते हैं जो कभी कहीं अधूरे रह जाते हैं। रात तो हो चुकी, 12:29 हो चुके, और इस रात आपके दिमाग के अंदर अगर कोई ऐसे अल्फाज सनसनाहट बरपा कर रहे हैं, कोई गुदगुदाहट बरपा कर रहे हैं, तो आपने मुझे वो बताने हैं। वो जुमले जो हलक में अटक कर रह गए थे, वो बात जिसका इजहार आप कर ना सके, वो चीज़ जिसको आप कहने के लिए शायद आज आप रिग्रेट करते हैं कि यार कह देता तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, काश के आज मैं कह देता कि सर मुझे चाहिए ये, मैं ग्रीडी हूँ, मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, मुझे ये पोजीशन ज़रूरत थी और ये पोजीशन मुझे मिली नहीं है, मैं इसका अहल था, लेकिन आपने मुझे नहीं दी, आपने मेरे साथ वाले साथी को दे दी है ये पोजीशन और मैं इसका अहल था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ कह देते तो शायद आपके बॉस को रियलाइज़ हो जाता कि नहीं यार ये वाला बंदा ज़्यादा कॉम्पिटेंट था, ऐसा कुछ है तो बताइएगा, कुछ और नहीं सोचना आपने, ठीक है ना। मैं तो ये पूछ रहा था यार, अच्छा बाज़ूकात ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा कुछ ना कुछ ऐसा
गैप बरपा हो जाता है कि जिनको हम उनकी मौजूदगी का जो एहसास है हमारी ज़िंदगी के अंदर या जो उनकी अहमियत है या वो कितने हमारी ज़िंदगी में अहम है हम उनको वो नहीं बता पाते। जैसे एक बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता होता है, बाप कभी अपने बेटे को बता नहीं पाता कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, और बेटा भी अपने बाप से लज्जा खाता है, वो उसे बता नहीं पाता कभी कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ आपसे। कभी उनको उनके दरमियान अक्सर बापों के अंदर बहुत सारे बाप तो फ्रेंडली होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपने औलाद के और अपने दरमियान एक गैप रखते हैं कि मैं उनकी तरबियत अच्छी कर रहा हूँ। खैर उनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मे बी कि उससे अच्छा भी होता हो और होता भी होगा डेफिनेटली। हर बंदे का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन इस दरमियान उनकी जो हग करने की जो उनकी तमन्ना थी, जो एक दूसरे के साथ दोस्ती वाला एलिमेंट था, जो एक दूसरे के साथ बातचीत वाला एलिमेंट था, वो कहीं ना कहीं खो जाता है और आपको कहीं लगता है कि यार मैं काश अपने बाप को हग कर लेता, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, काश कि मैं अपनी माँ के साथ उसके कंधे पे सर रख के बात कर लेता, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन काश कि कुछ वक्त और गुजार लेता।

वो कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हर काम करने में जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। काश के ना को मार देता, काश के पसे पुछ डाल देता सब कुछ और मैं कह देता। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर गया, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। उसे मालूम था मेरी खुशी और मेरी खामोशी का मतलब क्या है, उसे मालूम था कि मेरी खुशी और मेरी खामोशी का मतलब क्या है, फिर भी यूं पूछता रहा तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। ओके जी, गाना सुनाते हैं आपको, अताउल्लाह इस खिलवी की आवाज में वापस आते हैं, मेरे साथ रहेगा, मुझे आरजे केबी कहते हैं और केबी के साथ आपके साथ रहता है हर जुम्मे को 12 से लेकर 2 बजे तक। इस वक्त वक्त हुआ चाहता है 12:32 और 22 अगस्त है 2026 है और मेरा और आपका साथ है।

वो जो रूप, वो जो रूप भी है, वो जो रूप भी धारे, वो जो रूप भी है, वो जो रूप भी धारे, उसका हर रूप उस पे जेबा है। वो जो भी रूप है, वो जो भी रूप धारे, उस पे हर रूप जेबा है। एक बात कहनी थी जो बात अब तक ना कही मैंने। जाने किस बात पे रूठ गए वो, जाने किस बात पे रूठ गए वो, हम जिन्हें अपना कहा करते थे। बात इतनी सी थी कि उनसे कभी अपने दिल की ना बात कह पाए हम। कोई होता है हमारी जिंदगी के अंदर की जिसका नंबर आज भी हमारे फोन में सेव होता है, हम उसका नंबर निकालते हैं, बार बार देखते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर काटते हैं और फिर फोन निकालते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं, नंबर सामने स्क्रीन पे आता है फिर काट देते हैं, फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर मैसेज टाइप करते हैं, लंबा सा मैसेज उसको बार बार री एडिट करते हैं और उसके बाद फिर काट के साइड पे रख देते हैं। कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ लेकिन कह नहीं पाते।

0: जी जनाब, कोमल ईमान भी हैं जी मेरे साथ यूएसए से। और कोमल ईमान कहती हैं कि कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही। और कुछ ना कुछ हम कहना चाहते हैं, वाकई में कहना चाहते हैं। कह देना चाहिए भाई, दिल में नहीं रखना चाहिए भाई। जो भी कहना चाहते हैं कह डालिए 0511111011 के ऊपर। और इसके साथ साथ आप फेसबुक के ऊपर मुझे कह सकते हैं FM मनोमन चैनल पाकिस्तान लिखेंगे आप, आपको पेज मिल जाएगा, उस पेज के नीचे एक तस्वीर मिल जाएगी, तस्वीर के नीचे आप अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। कॉलर क्या कहते हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओके जी अंसारी साहब, बताइए।
1: क्या बताऊँ, बताइए। पिछली दफा आपने मेरा नाम लीजिए शाहिद अंसारी कराची से।
0: जी जी,
1: बड़ा मेहरबानी करा कहा करे हैदराबाद से
0: शाहिद अंसारी हैदराबाद। अच्छा, मैंने तो टिकट कराची का करा लिया है अंसारी साहब, आपने मुझे बुलाया था, मैं तो कराची जा रहा हूँ, आप अभी हैदराबाद से निकल गए।
1: नहीं तो आप पहुँच जाए उधर में, माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। मेरी बच्ची रहती है मलेर में, वो आपको रिसेप्ट करेगी। जो आपको इज्जत देगा शायद अंसारी, वो मेरी बच्ची आपको इज्जत देगी। वहाँ पे कोई मसला नहीं है, लेते रहता हूँ। बेटा ये अंकल आ रहा है, इनकी बहुत इज्जत करना।
0: हाँ ये तो कहानी ना हुई ना, आप बुला आप रहे हैं और बच्चों के हवाले कर रहे हैं, ये तो फिर बात ना बनी ना।
1: अच्छा पिछली दफा आप जो कोरोना पकड़ के वहां पर थोड़ा सा दिन सर ने गाने की परवाह के लिए नीचे चले गए।
0: अच्छा
1: मेरी सुना हुआ यार, बता के कहता हूँ यार।
0: तो अंसारी साहब बताइए, कौन सी ऐसी बात है जो अभी तक दिल में
1: है? दिल में एक जहर सी उठी है अभी।
0: आह दर्द हुआ है। नहीं बिल्कुल भी ताजा हवा नहीं है, बहुत बुरी है।
1: मेरा मौला के कारण से दिल में कोई वो नहीं है। मैंने सरकारी नौकरी कर ली, तीन माशाल्लाह चार बच्चे मेरे, पांच नवासा नवासी। मौला के कारण से बहुत अच्छी मेरी जिंदगी गुजर गई। भले अब ये आंटी आपकी है नहीं है, वो मेरे को याद आती है बेचारी, वो अपनी जगह है। मगर मेरा बहुत, मेरे मौला के कारण से बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। आप जैसे भाई मेरी सुन देते हैं, मुझे बोलते हैं हाँ ठीक है यार गाना डालो, हम बर्दाश्त कर लेंगे।
0: मैंने आपको कभी भी नहीं कहा अंसारी साहब,
1: तो क्या ना कराऊं मैं अगर आपका।
0: नहीं अंसारी साहब, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप गाया करें।
1: नहीं वो तो बोले हिम्मत है ना, वो की बर्दाश्त।
0: मैं आज बड़ा कमजोर हूँ, लिटरली बड़ा कमजोर हूँ। वो
1: बस उम्र दी आप, कोई मसला नहीं। इसको क्या ना कलाम है, अगर चाहेंगे तो सुना दूंगा, पर कोई मसला नहीं। क्योंकि दिन करने बारे बल्कि नाच कहेंगे नाच सुना दूंगा। अब आप कहेंगे
0: अंसारी साहब अगली दफा सुनेंगे, आज आज आज नहीं अगली दफा सुनेंगे, नेक्स्ट टाइम।
1: नहीं नहीं मुझे ये लोग पसंद नहीं है, ये नए बंदे मुझे इनकी कोई भी याद नहीं है। मुझे पुराना जितने भी आप बोलेंगे मैं आपको सुना।
0: नहीं बस अंसारी साहब अगली दफा सुनेंगे, सारे पुराने भी नए भी। अगली दफा प्रोग्राम में पूरे 2 घंटे का आप पे रखना, आपने सारे गाने गा देने। ठीक है
1: ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। क्योंकि जब मैं गाने लगता हूँ ना तो बहुत से लोगों के पेट में बहुत दर्द हो जाता है, ऐसा नहीं करो।
0: हाँ पेट में भी होता है, सर में भी होता है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी,
1: नहीं कर दो सही मेहरबानी आप।
0: थैंक यू अल्लाह हाफिज। थैंक यू अंसारी साहब। अंसारी साहब आते हैं हैदराबाद से। और अंसारी साहब अच्छी बात नहीं, आपने मुझे कहा कि मैं आप कराची आ जाओ, मैं तो कराची आ रहा हूँ, मैं तो कराची आ रहा हूँ और आप हैदराबाद के निकले हैं ना। मारो सनु संगला नाल वादे ते इतबार कीता। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के भी आपके साथ है जी।
2: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या हाल है, ठीक है आप?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: बस आपकी दुआ है, ठीक हूँ।
0: कौन साहब बात कर रहे हैं?
2: मैं सैयद खावर अजीज इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ
0: जी। खावर अजीज साहब इस्लामाबाद से आप बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप खावर साहब?
2: मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, गार्ड हूँ।
0: ओके okay, तो अभी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको किस चीज ने मजबूर किया? मुझे लगता है पहली दफा कॉल कर रहे हैं।
2: मैं पहले 2-3 दफा की है।
0: अच्छा ओके okay, तो आप बताइए मुझे कि क्या कहना चाहेंगे आप मुझे ये बताएंगे कि आपके दिल में ऐसा कौन सा लफ्ज है जो छुपा पड़ा है, जो आपने कभी किसी से कहा नहीं है और आप कहना चाहते हैं?
2: नहीं
0: नहीं बताएंगे।
2: नहीं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको नज़र सुनाना चाहता हूं।
0: अच्छा सुनाएं जी। किधर गई? इधर आ गई, घूम गई।
2: तो मेरे वाले साहब की नज़र में पंजाबी।
0: अच्छा
2: तो
0: जी हाँ
2: अच्छा
0: अच्छा जी जी जी जी हाँ जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कमाल जी जी ओह ओह बोल गए नहीं चलो ख्याल रखे ख्याल रखे नेक्स्ट टाइम सुनेंगे
2: नहीं नहीं
0: हाँ अच्छा सुना रहे हैं सुनाए
2: अच्छा
0: जी अच्छा जी जी जी जी तो
2: वो आए तो बहारों को बड़ी तकलीफ होती है
0: वो आए तो बहारों को बड़ी तकलीफ होती है
2: इन्हें जब भूल तो खारों को बड़ी तकलीफ होती है मेरे दुश्मन अगर से जब भी मेरा नाम लेते हैं तो मेरे चंद ग्यारों को बड़ी तकलीफ होती है
0: हाय हाय हाय अच्छा
2: मैं तेरी मरमरी बाहों का लेता हूँ सहारा जब तो अक्सर बेसहारों को बड़ी तकलीफ होती
0: है हाय हाय इस उम्र में बाहें वैसे ही मरमरी हो जाती हैं है ना
2: जो तुझसे मरमटे शम्मा तो कहना बेवफान को इससे जान सारों को बड़ी तकलीफ होती है तेरे उसे मसाली से जमाना सारा जुड़ता है शोषण चांद तारों को बड़ी तकलीफ होती है
0: वाह वाह बड़ी तकलीफ होती है वाकई बड़ी तकलीफ होती है है ना
2: तो निकलती है कोई बारात कभी उनके गुच्छे से तो ताहिर हम कुवारों को बड़ी तकलीफ होती है
0: आए हाय हाय हाय वाह जी वाह मुझे लगता है बड़े जले में है वैसे
2: ये भाई की नजर है जो मैंने आपको सुनाई है
0: अच्छा भाई की नजर है
2: जी जी
0: वाह जी वाह आपके भाई बड़ा अच्छा लगते हैं वेरी नाइस
2: जी जी वो इंतजार कर गए हैं काफी देर से तो वाले भी शायर थे
0: अच्छा माशाल्लाह
2: शायर है
0: माशाल्लाह
2: बड़े भाई भी शायर थे
0: अच्छा वाह कमाल तो आप भी लिखते हैं अच्छा आप पढ़ते हैं उन्होंने आपको पढ़ने के लिए रखा हुआ है लिखते वो हैं पढ़ते आप हैं
2: वो दोनों गुजर गए हैं
0: अच्छा अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे जवारे रहमत करे
2: आमीन आमीन
0: चलो ख्याल रखें मेरे भाई अपना बहुत सारा बहुत शुक्रिया

0: अच्छा तो हाँ जी जी जी ओके तो अच्छा जी तो जुनैरा खान है मेरे साथ जी, सलाम कह रही हैं लाहौर से, कहती जी मेरे दिल में सवाल है कि मर्द क्यों रोता है अपनी मोहब्बत के सामने, मर्द क्यों रोता है अपनी मोहब्बत के सामने। दूसरा सवाल यह है कि अगर मेरे बस में होता तो अपनी जिंदगी में कुछ इंसानों को डिलीट या अनडू कर देती। तो दूसरे वाला सवाल नहीं है सुनहरा, दूसरे वाला जो है ना वो आपकी ख्वाहिश है जो आप बताना चाह रही हैं, वो आप जरा अपने आप को करेक्ट कर दीजिए। दूसरा सवाल नहीं है, पहले वाला आपका सवाल है कि मेरे दिल में सवाल है कि मर्द क्यों रोता है अपनी मोहब्बत के सामने। तो मैंने तो ऐसा कोई मर्द देखा नहीं है कि जो अपनी मोहब्बत के सामने रोया हो, और मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कभी किसी को ऐसे रोता हुआ देखा हो। अगर मैंने देखा होता तो मैं सुनारा जरूर बता देता हूँ। नकाश तबस्सुम है, मैं रावलपिंडी से जी प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू जी, कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
1: हेलो
0: जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप बताइए, आप खैरियत से?
1: अल्लाह का सलाम, बहुत शुक्र अल्लाह का
0: जनाब। ओके जी, बताएं क्या नाम है आपका मोहतरम?
1: जी मेरा नाम है मतलूब हुसैन, कश्मीर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं भी अभी पहले भाई ने कॉल की थी, दोनों में सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ, रात की ड्यूटी होती है।
0: अच्छा जी,
1: आप प्रोग्राम तो सब आर जी से सुनते रहते हैं, लेकिन कॉल नहीं मैंने किसी को भी नहीं की। चलो मैंने कहा चलो आज भाई से कॉल कर लेता हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, फिर तो आपके लिए ढोलकी बजानी चाहिए ना। अच्छा ओके जी, तो बताइए आपके दिल में कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हो, कभी कहा ना हो, या किसी को आपके दिल में यार काश के मैं कह रहा
1: हूँ,
0: या आपके दिल में ऐसा हो कि रख के देता यार मैंने रख के दी नहीं है, क्यों नहीं दी, ऐसा कुछ है?
1: क्या सुनाऊं दिल की हकीकत, क्या सुन पाओगे, नाजुक सा दिल है रोने लग जाओगे।
0: आए हाय, नाजुक सा दिल है रोने लग जाओगे। वाकई मुझे आज रोना बड़ा आ रहा है वैसे।
1: जी जी, बस प्रोग्राम आप अच्छा करते हैं, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, आपके प्रति दे।
0: आमीन जी, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छे अच्छे लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं डेली, तकरीबन जिस आदमी का भी होता है सुनते हैं। मैं चलो आज बाइक से फायर पर ये कर लेते हैं, तो चलो
0: चले जी। बिल्कुल ठीक है सर, अपना भी ख्याल रखिए, बहुत सारा ढेर सारा बहुत शुक्रिया आपकी।

अच्छा जी, कोमल ईमान ने भी मेरे से एक सवाल किया, मैं कोमल को सजेशन देना चाहता हूँ, जो पहला लफ्ज आपने लिखा है ना, इस लफ्ज को आप एक्सपांस कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खमीर आपका भी यहीं से जुड़ा बना है, मट्टी आपकी भी यहाँ से ली गई है। तो पहले वाला जो वर्ड आपने लिखा है ना, उसको एक्सपांस कीजिए, आगे वाला सवाल ना उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।

ओके जनाब ओके। और आप सुन रहे हैं जी वन इंटरनेशनल, और के भी आपके साथ हैं और आप मेरे साथ हैं जी। और हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी कसकें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो मुझे कभी कभार जब ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा कर देना चाहिए था, या कह देना चाहिए था, या मुझे रिएक्ट करना चाहिए था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोला हूँ और उस बोलने के ऊपर मुझे रिग्रेट हुआ हो कि यार मैं बोला था और मुझे बोलना नहीं चाहिए था, वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे इस बात पे रिग्रेट हुआ हो। ऐसा हमेशा रहा कि जब भी रिग्रेट हुआ, इस बात पे रिग्रेट हुआ कि मैं बोला क्यों नहीं यार, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं किया, मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया, और मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं कही।

कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि जो हम कह नहीं सकते, और कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि जो हम देख के उसको कनेक्ट करते हैं उस बात के साथ, या उस लम्हे के साथ, या उस चीज़ के साथ के जिसने हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत बड़ी सीख दी होती है। एक किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बूढ़ा प्रोफेसर था, और जो शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके थे, और उनकी एक ज़िंदगी का एक अजीब मामूल था। बूढ़े प्रोफेसर थे और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और वो यूनिवर्सिटी से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना रखा था। और मामूल ऐसा था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे एक पुराना बोसीदा लेकिन खूबसूरत एक कोट टांगा रखा था, टांग के रखते थे, और उसको रोज़ाना वो देखते थे। और वो कोट ना उनके साइज का था, ना ही उन्होंने कभी उसे पहना था, बस सिर्फ उसे वो देखा करते थे। बेटी उनकी अब जवान हो चुकी थी, और जो खुद भी साहिब औलाद हो चुकी थी, अक्सर उनसे पूछती थी कि अब्बू, आपने इस पुराने कोट को इतने सालों से यहाँ क्यों संभाल के रखा हुआ है, ये तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, बल्कि तो ड्राइंग रूम की जीनत को भी ख़राब कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही पुरानी चीज़ आपने लटका रखी हो। खूबसूरत ज़रूर था अपने वक्त का, लेकिन आज शायद इसकी यहाँ पे जगह नहीं है, इसे हटा क्यों नहीं देते आप। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बात को टाल दिया, और कहने लगे कि कुछ चीज़ें पहनने के लिए नहीं होती, याद दहानी के लिए होती हैं। बेटी ने बहुत इसरार किया, लेकिन वालिद ने बात को इधर से उधर करके टाल दिया। लेकिन एक रात ऐसी आई कि जब बारिश हो रही थी, और दोनों बाप बेटी चाय का एक कप लिए एक टेबल पे बैठे थे। बरामदे के सामने बूंदें गिर रही थी। सहन में जब पहले से मौजूद पानी के ऊपर वो बूंदें गिरती थी, तो अपना आप दिखाती थी, एक सर्कल बनाती थी, कुछ छींटे इधर से उधर जाते थे, कुछ मट्टी के अंदर शगाफ होते थे। कोट वहीं सामने लटका था, क्योंकि दरवाजा खुला था और ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। बेटी ने फिर वही सवाल दोहराया और बोला कि अब्बू जान, आप इस कोट को हटा क्यों नहीं देते, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इतना खूबसूरत आपने घर बनाया है, इतना महंगा हमारा घर है, इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम सजाया गया है, उसके अंदर इस कोट की क्या वजह है कि आपने इसको क्यों नहीं हटा रहे, स्टोरी तो बता देना मुझे। इस बार प्रोफेसर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोट आज से 35 साल पहले का है, तब मैं यूनिवर्सिटी में नया नया उस्ताद लगा था और हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक दिन बारिश के मौसम में मेरी तुम्हारी अम्मी के साथ शदीद बहस हो गई। जब हालात नाजुक होते हैं ना, तो फिर बहसें हो ही जाती हैं, क्योंकि हर कोई आपको मशवरा दे रहा होता है कि आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप, इस तरह से क्यों नहीं कर लेते आप, आपने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, बस ये लफ्ज़ जब आप सुनते रहते हैं तो फिर आपका टेम्परामेंट डेफिनेटली आप लूज कर जाते हैं। तो वालिद ने कहा कि बेटा, मेरी बड़ी शदीद बहस हो गई थी, इस कदर बहस बढ़ गई कि बात बड़ी मामूली सी थी, लेकिन इस कदर बढ़ गई कि मेरा अना और गुस्सा मुझ पे इतना हावी आ गया कि मैंने गुस्से में तुम्हारी माँ को झटका। तो वालिद ने कहा कि बेटा, मेरी बड़ी शदीद बहस हो गई थी, इस कदर बहस बढ़ गई कि बात बड़ी मामूली सी थी, लेकिन इस कदर बढ़ गई कि मेरा अना और गुस्सा

0: अरे वाह, अरे
1: और
0: वाह, कमाल।
1: सर बात सर उसके अलावा मुझे अनिल आपकी के लिए एक शायरी
0: जी बोलिए।
1: है। सर मुझे अनिल आपकी को ये कहना है कि सब मेरी जो सुनने वाली बहन है सबका रास्ता होता है, तो एक दूसरे के पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरे पास पता नहीं रास्ता ही नहीं हो रहा उससे, पता नहीं किस तरह होगा, वो मुझे अगर आकर बता दे तो मुझे फिर भी कोई बात नहीं। मुझे से ये कहना है कि आप दूर हो मगर कोई गम नहीं, आप दूर हो मगर कोई गम नहीं, आपको भुला दें ऐसे हम नहीं, तो क्या हुआ मुलाकात नहीं हो रही, आपकी याद किसी मुलाकात से कम नहीं।
0: वाह जी वाह, कमाल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया इरम, अपना ख्याल रखें। इरम थी जी मेरे साथ लाहौर से, और नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मोहतरम, क्या हाल है?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए के भी भाई आपके क्या हाल?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन साहब है?
2: नहीं पहचाना भाई,
0: नहीं पहचाना जी आपको।
2: ईदू याद करो।
0: अरे वाह, ईदू, ईदू कैसे आज चांद निकला ईद का?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए भाई, आज आपने पहचाना भी नहीं यार, हद हो गई यार भाई।
0: बस वो कहते हैं ना कि बेवफा लोगों को नहीं पहचानना चाहिए। हम तो वो वाले नहीं है ना कि जो बस लोट पोट हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। हैं
2: अच्छा,
0: हाँ, तो आते रहोगे तो भाई हम दीवाने रहेंगे ईदू के। अब ईदू नहीं आएगा तो हम कैसे कैसे दीवाने रहेंगे? देखो,
2: नहीं मैं तो आता रहता हूँ कभी कभार।
0: मोहब्बत भी खराज मांगती है ना, रात का जागना मांगती है।
2: नहीं वो तो जागता रहता हूँ सबको पता है, लेकिन अगर शो के सामने नहीं होता लेकिन शो सुनता तो।
0: अच्छा, इतने अरसा हो गया मतलब आपने कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि आपका दिल बिल्कुल नहीं किया कि यार मुझे कॉल करनी चाहिए।
2: कॉल मिलती क्या है भाई आपके शो में?
0: अच्छा, कॉल नहीं मिलती? आज मिला ली, देखो मिल गई।
2: आज मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना कॉल मिलती कहाँ है।
0: तो फेसबुक पे कमेंट कर दिया करो।
2: मैं फेसबुक कमेंट वगैरह नहीं करता, बस मुझे कॉल पे आना अच्छा लगता
0: अच्छा चलो, मुझे बताओ दिल में कुछ है ऐसा जो बाकी हो?
2: है। दिल में किसका कुछ नहीं होगा,
0: अच्छा
2: सबका है, तो
0: तो बताओ फिर जो रखा है दिल में।
2: यहाँ पे थोड़ी बोल सकता।
0: मुझे बोलो ना, कान में बताओ, किसी को मत बताओ। बाकी सारे
2: नहीं
0: आंखें,
2: बोल
0: बाकी
2: सकता
0: सारों को मैं कहूंगा आप आंखों पे हाथ रख लो, आप मुझे बता दो।
2: आंखों पे मैं तो हाथ रख लूंगा, पूरी दुनिया तो सुन रही होती है
0: कोई
2: ना,
0: नहीं सुनता, सारों के कान बंद है। चलो बताओ।
2: सब किसी का कान बंद नहीं है, सब सुन रहे होते हैं कि इतु आज कहाँ से नाजिल हुआ।
0: हाँ ये बात भी है वैसे।
2: और गुरु भाई कैसा है, तबीयत
0: मैं बहुत अच्छा
2: ठीक
0: हूँ,
2: है? अच्छा,
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
2: आज शायद मेरी आवाज आपको चेंज लग रही होगी ना।
0: हाँ मुझे चेंज लग रही है आपकी आवाज में, लगता है आपने नींबू खाया है।
2: नींबू तो नहीं गया लेकिन गला खराब है तो इस वजह से। नहीं
0: हाँ, नींबू खाने से गला तो खराब होता है।
2: नींबू मैंने नहीं खाया।
0: अच्छा, फिर सब्ज मिर्च खाई होगी।
2: नहीं, रात का खाना तो मैंने चिकन कढ़ाई खा लिया था। हाँ थोड़ा हल्का सा नींबू ऐड किया था।
0: हाँ देखा ना, देखा, पकड़ेगी। अगर अगर सब्ज मिर्च चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ कराची, ले आऊंगा तुम्हारे लिए।
2: अच्छा कब आ रहे कराची?
0: मैं आ रहा हूँ संडे को।
2: अच्छा इस संडे को इंशाल्लाह।
0: हाँ हाँ हाँ
2: अच्छा, नहीं कल नहीं परसों है ना संडे।
0: जी जी परसों। ए मुग्गी द बैलेंस। नहीं मिलूंगा, हवा हवा है, हवा हवा, ये लो जी हवा। ओके जी, सुनैरा मेरे साथ हैं। सुनैरा मुझे कह रही हैं कि मुझे बस इस बात का रिग्रेट है कि मैं बोलूं कुछ भी, मेरी अब बात करना जो है वो सबको ईगो लगता है। मैं कुछ भी बोलूं मेरी बात सबको ईगो लगती है, मैं बोलना चाहती भी हूं, मेरी नेचर भी है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। मैं कहती हूँ कि मुझे किसी के साथ कंपेयर मत किया जाए, मुझे किसी बेटी के साथ, किसी बेटे के साथ कंपेयर मत किया जाए, मेरी अलग आइडेंटिटी है, मैं अलग हूँ, मुझे अलग समझा जाए। बता मुझे कौन है वो, मिलूंगा मैं उससे जनारा। बता मुझे कौन है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बता, मैं मिलूंगा उससे। शौकत हुसैन है मेरे साथ जी, सलाम कह रहे हैं, और जीना है मेरे साथ जी, और कहती हैं कि आपकी पोइट्री मुझे बहुत पसंद आती है, मेरी कल बर्थडे है, काइंडली मुझे विश कर दें और मुझे भी पोइट्री डेडिकेट कर दें। पोइट्री आपको डेडिकेट कर दूंगा मैं जीना, लेकिन बर्थडे कल है तो कल विश करनी चाहिए ना, आज क्यों करें, कल तुम्हारी बर्थडे, आज क्यों करें, आज क्यों तुमने विशेष समेटनी है।

फूल खिलते हैं जिंदगी की राह में, हंसती चमकती है आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। जीना, दिस इज फॉर यू।

0: हाँ जी, मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदल रहा होता है तो आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। मैं देख रहा हूँ कि जी बहुत ज़्यादा डाइट का प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को बुखार और पेट के मसाइल और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मौसम सावन का ख़त्म हुआ है तो मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। तो जैसे ही मौसम बदलता है तो आपकी बॉडी जो है उसके एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तंग कर रही होती है आपको, तो सो सोडा वाटर इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो,
1: नाजिक दिल दे मालिक आ साडा दिल ना यार दिखाया कर।
0: आहा,
1: मैंने कितनी बारी आके आए साडे सपने विच ना आए।
0: वाह वाह वाह, कौन है वो जो आपके सपनों में आता है?
1: वालेकुम साजेदार लौट
0: जी। सर तो कौन है वो आपके सपनों में आता है, आपको तंग करता है?
1: आप ही ने, मैंने आपको सुनाया है।
0: अच्छा, मुझे सुनाया तो मैं आपको क्यों तंग करता हूँ?
1: आपकी खा के खरीत से आपका इंतजार होता है बहुत शिद्दत से।
0: अच्छा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
1: तो इंतजार जो होता है ना, ये बहुत ही जानलेवा होते हैं। ये पता है सबसे जो दुनिया में तकलीफ जो चीज होती है वो इंतजार होता है,
0: इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजार बहुत मुश्किल होता है।
1: तो एक दो शेर और सुनाऊंगा और शायद भाई को मैं एक मशवरा दूंगा कि आप शहरी समझें और इसको आप पढ़ना शुरू करें। ये जिस उम्र में है इसका गला जो है अभी साथ नहीं देता तुझे गाने गाए।
0: अंसारी साहब को
1: जी शायद भाई को मैं मशवरा दे रहा हूँ, ये शहरी पढ़े रफीब भाई मुजस्सरे हमें अलीला साहबा है और माजमीन साहबा मौजूदे सिंगर शहरा है, उसको सुना करें और शरीर पड़ा करें, ठीक है?
0: हाँ, गाया ना करें।
1: हाँ, तो टाइम जो जाया होता है तो दूसरा मैं थोड़ी सी और आपको दो तीन शेर सुनाऊंगा। मैंने इन्हीं उस्तादों से ये सीखा है, ऐसे नहीं कि मेरे पास किताबें पड़ी होती हैं।
0: जी।
1: तो कहते हैं ना कोई हाथ भी ना मिलाएगा
0: जी,
1: जो गले मिलोगे इत्तेफाक से
0: जी,
1: ये नए मिजाज का शेर है जरा फासले से मिला करें। वो गजल की सच्ची किताब है उससे चुके चुके पढ़ा करो।
0: वाह, कमाल सर, कमाल सर, बहुत खूब।
1: थोड़ा दो चार मिनट होते हैं बस, इतने ही सुना दे तो सुनो गानों से हसीन कमाते को सलाम दूंगा, मेरे सलाम कबूल करें फिर इजाजत चाहूंगा।
0: अच्छा सर सुने ना
1: जी, जी
0: कुछ बातें ना मेरे दिल में भी अधूरी हैं जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जब भी कॉल आती है ना तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कह दूँ लेकिन मैं कह नहीं पाता ना। अब समझने वाले समझ जाए ना यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, नहीं आपको नहीं कहना
1: चाहता
0: सर, आपकी कॉल आती है हमें अच्छा लगता
1: है,
0: आपकी कॉल आती है हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगता
1: है, बहुत शुक्रिया।
0: आप देखिए आप जा रहे थे, आपको मैंने पीछे से खींच के पकड़ लिया, मैंने कहा सुने ना, अरे अरे रुके ना जरा मेरी सुन तो लें, है ना
1: जी, मैं बिल्कुल मैं देख।
0: हाँ, तो आप मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने कहा ना अरे सुने रुक जाएं।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत। मैंने कुछ प्रोग्राम छोड़ दिए, आपका प्रोग्राम और चानू भाई का और रफीम भाई का प्रोग्राम।
0: अच्छा, ये तीन प्रोग्राम छोड़ दिया आपने?
1: जहाँ पे सुरम भाई की इज्जत नहीं होती बंदे की, वहाँ वो जगह छोड़ देनी चाहिए और प्रोग्राम को छोड़ देना चाहिए।
0: अच्छा, मतलब ये तीन प्रोग्राम आपने छोड़ दिए, बाकी सारे सुनते हैं?
1: नहीं, ये मेरे दिल के करीब है हमेशा के लिए।
0: अच्छा, ये आपके दिल के करीब है। अच्छा सुने ना, मेरी बात तो सुने।
1: यस यस,
0: मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन लफ्ज अधूरे रह जाते हैं।
1: लफ्ज जो है वो साथ नहीं दे रहे।
0: लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ
1: आज आज आज आपको जरूरत है।
0: लेकिन लेकिन लेकिन पता है क्या, बाज़ुकात ऐसा होता है जो सामने सुनने
1: में कुछ

0: जो भी बात होती है ना बंदा कह डाले। आज जो बंदे टाइम चले जाता है फिर पछो कावे के अलावा और कुछ नहीं।
1: अच्छा बाज़ूकात ऐसा होता है ना, बाज़ूकात ऐसा होता है कि आप जो लफ्ज़ किसी को कहना चाहते हैं ना वो कोई और आपकी जगह कह जाता है। आप कहते हैं हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो था,
0: यही तो मैं बात करना चाहता जो पहले वाला कर गया।
1: हाँ बस ये कुछ आज ऐसा ही हुआ है।
0: जो जुमले होते हैं जो अल्फाज होते हैं ये किसी के मुताज नहीं होते।
1: अच्छा सुने ना,
0: जिससे इंसान पैदा करता है और इन जुमलों को जहन में बिठा कर मैं तो सोच कर रहता हूँ कि मैंने फरम के साथ क्या बात कर ली।
1: अच्छा आप सोच के आते हैं?
0: मैं सोच के आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोया से उठूँ और मैं काल काट मारू। आगे से तो आवाज भी नहीं निकलती ना, किनको अड़ोग में सुनता रहता हूँ।
1: अरे कमाल कमाल। अच्छा मेरी बात सुने। आपने जितनी बातें की
0: आप चलते हैं ठीक है ना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉल रही मेरी। आपका प्रोग्राम ही एक दो तीन प्रोग्राम पिछले साल मैंने सुना, तो इससे पहले था, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मैंने चैनी भाई को भी तारीफ की थी कि यार बहुत जबरदस्त, उसकी सिलेक्शन ये थी कि मौसीकी बहुत जबरदस्त थी। पहले मदीन साहब को आपने प्ले किया, बाद में खलील हैदर की आपने वो गजल प्ले की, कपड़े बदल कर जाऊं कहां,
1: मैंने कपड़े बदल के जाऊं कहां,
0: शहर भी छोड़ गया अब बाल बनाऊं किसके लिए।
1: आज अब तो अच्छा मैंने
0: वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था।
1: अब वो शहर में नहीं, किस
0: जबरदस्ती जब ये मार्केट में आई थी तो लोग बड़े तवज्जो से इनको सुनते।
1: अच्छा सर आज मैंने शुरू में गजल प्ले की है, वो सुनी है आपने?
0: नहीं मैंने वो तो एक तो अभी आपका प्रवीण की चल रही थी।
1: नहीं आपने, मुझे लगता है आपने स्टार्ट में प्रोग्राम नहीं सुना, मैं अभी प्ले करता हूँ दोबारा, ठीक है? आपने
0: जरूरी काम पड़ गया था, मैं 10 मिनट पहले जो ना जब स्टार्ट किया तो सोच भी हुआ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन चला गया।
1: अच्छा अब मैं सिर्फ आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? सुने ना।
0: Thank you, sir.
1: अच्छा सुने ना, बात तो सुने
0: Allah.
1: सुने ना, हेलो
0: जाने दे, जाने
1: दे, ओके जी अपना ख्याल रखें, बाय बाय सर, दिस इज फॉर यू। एक दफा फिर प्ले कर रहा हूँ, इसको आपने सुनना है जी, अपने दिल के तारों के साथ सुनना है।

ओके जनाब, जीना है मेरे साथ और जीना कहती है कल आपका प्रोग्राम नहीं होगा तो मुझे आज ही आप हैप्पी बर्थडे कह दें, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी, फरा अफजल कहती हैं कि मैं वैसे तो बहुत एक्सप्रेसिव हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अधूरी छोड़ देती हूँ, फिर जब खुद अपने साथ होती हैं, अपनी अकेली होती हूँ तो खुद से खुद कलामी करती हूँ और खुद कलामी में वो बातें मुझे काम आ जाती हैं। वैसे भी सब कहना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हर बात को नारा मस्ताना नहीं करना चाहिए, नारा नहीं बजाना चाहिए। सर अफजल कहती हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग आबदा जी, तो एक और आबदा जी लीजिए। हानिया नूर है मेरे साथ और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फरा अफजल मुझे कह रही हैं कि जी आप मुन्नी बेगम प्ले कर दें, तो मुन्नी बेगम मैं देखता हूँ जी। हानिया नूर कहती हैं कि जो गज़ल आपने अभी प्ले की है इसका नाम क्या है और ये वॉइस किसकी है? तो ये कुछ ऐसा है हानिया, ये जो गज़ल है, अरे कमाल कमाल गज़ल है जी, ये हैदर अली साहब ने गाई है जी, पाकिस्तानी सिंगर हैं, हैदर अली उनका नाम है और उनकी टीम ने गाई है, और ये एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर और बड़े मारूफ अदीब हैं, शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं, इदरीस आज़ाद, ये इदरीस आज़ाद साहब की लिखी हुई है और इसको हैदर अली साहब ने जो है वो गाया है।

और अच्छा इसका नाम पूछ रहे हैं जी, तो इसका नाम है खफा मत हो, खफा मत हो, मेरे बदले तुम गुलदान रख देना, मेरे कमरे में जो सबसे बेकार शय है वो मैं था, आए वो मैं था। कल शब जो हस्ती बर्फरे, कल शब जो हस्ती बर्फराजेदार थी, हाँ बर्फराजेदार थी वो मैं था। बड़ा मुश्किल लफ्ज है ना बर्फराजेदार।

0: शबनम कबूल हूँ कि नहीं हूँ, आप गुस्सा मुझे कर रहे हैं, आप बरहम हो रहे हैं, तो आपकी कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप?
1: आप ठीक हैं? हमीद गुल
0: जी, हमीद गुल साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
1: आपके मौजू से मैं शेर सुना सकता हूँ?
0: जी जी।
1: उम्र भर साथ रहना चाहता हूँ। शेर था के
0: उम्र भर साथ रहना चाहता
1: हूँ। नहीं, मैंने दूसरा मिला के मेरा अपना शेर है कि तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमसे
0: एक बात कहना चाहता हूँ,
1: कहना चाहता हूँ उम्र भर साथ रहना।
0: आए हाय हाय हाय हाय, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, उम्र भर साथ रहना चाहता हूँ।
1: ये जो ये वो बात है जो शादी से पहले लोग कहते हैं, बाद में उसको कहा करें, बड़ी खिदमत करती है, देखो बच्चों को पालती है, आपका ख्याल रखती है। आप तो कोर्ट वाले वाक्य ने मुझे बड़ा मुतासर किया।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ
0: चले जी।
1: ये कुछ तुम जो इस हिस्से में इंसान को जाके पता लगता है कि ये बात बड़ी सच थी।
0: ऐसा ही है,
1: ये बात बड़ी सच थी जो आपने की।
0: ये बड़ा जरूर।
1: हम नहीं, ये बात इसलिए सच है कि वो कहते हैं ना कि हम तो इजहार कर लेते हैं, शादी भी हो जाती है, उस बात बड़ी मसरूफियत भी हो जाती है, पता ही लगता, बड़े भी बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे इजहार करना चाहिए, बल्कि करते रहना चाहिए,
0: बार बार करना चाहिए।
1: इसीलिए मैंने कहा कि तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ,
0: उम्र भर साथ रहना चाहता हूँ,
1: उम्र भर साथ रहना चाहता।
0: कमाल कमाल, अमीर गुल साहब बहुत कमाल।
1: दो शेर आपको बड़े अच्छे से सुनाने को दिल कर रहा था, वो तो आपके कोट के से और आपने जिक्र किया तो मुझे शेर सब मेरे जहन में आ गया। मैं आपको दो शेर साथ के सुनाता हूँ, मलिक ज़ादा जावेद के दो शेर हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं,
0: मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं,
1: बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते
0: हैं। बुरा हो वक्त, वाकई इसमें कोई कबाहत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं।
1: बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। शेर मुलायदा कीजिएगा कि अमीर लोगों के घर भूल कर भी मर जाना, अमीर लोगों के घर
0: भूल कर भी मर जाना
1: हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं।
0: आए, आए, आए, आए। अच्छा, सारे अमीर नहीं बताते, अमीर गुल साहब कुछ ही बताते हैं जो
1: आधे हैं। आपको ये तो मैंने कब कहा है कि सारों का तो मैंने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा ये शेर था कि नए अमीरों के घर भूल कर
0: नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना,
1: हर शेय की मेरे जहन में फौरन वो आ गया। तो ये है, बाकी सोच रहे हैं, दुआओं में याद रहे, बारिश हो रही है, पुलिस इस्लामाबाद में बड़ी बारिशें हैं।
0: जी जी जी,
1: आपके सावन में हाथ कर दी।
0: जी जी, अल्लाह ताला रहमत करे और
1: दुआ करते हैं कि बस अल्लाह जी सावन में खैर करिए, फिर आज के आखिरी अजाम है सावन के भी, लेकिन बहरहाल हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मुल्क को और इसके हर शहर को अपनी हिफाजत में रखे। दुआओं में याद रखिए।
0: थैंक यू उम्मीद गुल साहब, बहुत सारा शुक्रिया आपका, बहुत सारा ढेर सारा। हाँ जी, बाद में सुनेंगे, ये वाली कॉलर पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: अरे क्यानी साहब, ये क्या चक्कर है आजकल, आप दोनों भाइयों ने क्या क्या क्या गोटी मिलाई हुई है, बताएं मुझे।
1: साथ ही है जी, ऐसे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं।
0: अच्छा, ये
1: है।
0: सिर्फ मेरे प्रोग्राम में है या बाकियों के प्रोग्राम में भी ऐसा हो रहा है?
1: नहीं नहीं, किसी बाकी और प्रोग्राम में हमीद गुल साहब को नहीं सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं जिस प्रोग्राम में आता हूँ प्रोग्राम में अमीर गुल साहब नहीं होते हैं।
0: अच्छा,
1: ये आपका एक यही प्रोग्राम है जिसमें मैं इनको सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और फिर दूसरी बात है कि ये हमारी आगे पीछे काल आ गया।
0: अरे कमाल कमाल, ये मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा वैसे, आप दोनों भाइयों की
1: केमिस्ट्री और ऐसी कुछ बात है।
0: चले, इत्तेफाक बरकरार रहे। तो सुनाइए कैनी साहब, क्या कहने आए आज?
1: आज बड़ा दिल से आपकी दोनों स्टोरी सुन के ना, तो बड़ा दिल से अजीब से दिल की हालत हो रही है।
0: कहिए ना, दिल के पपोले ही तो छेड़ने आया हूँ मैं।
1: तो वो मुझे वो मोहम्मद अशरफ की लालच से जाने लगे, तो सुनने दे भी तेनु मैंने माही मिलिया, तो मैं गल विच पा लिया बाँह।
0: आहा,
1: ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ,
0: ਮੈਂ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਵਾ,
1: ਡਰਦੀ ماری اک نہ کھورا کسے شیر وچڑ آ جائے
0: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ڈر دے ماری اک نہ کھولا کہ کرے
1: کسے شیر وچڑ آ
0: جائے آئے ہائے ہائے واہ جی واہ واہ جی واہ. کہنا چاہتا ہے شاعر یہ جن کو پنجابی سمجھ نہیں آتی ان کو میں بتائے دوں کہ خواب میں وہ مجھے ملا اور میں نے اس کے گلے میں باہیں ڈالنی اور ڈر کے مارے میں نے آنکھیں نہیں کھولیں گے اگر آنکھیں کھول دیں تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا. ارے کمال کمال کمال کہا ہے.
1: ایک اور پنجابی میں کہ جے کوئی کسی دا عاشق ہوئے تو اسے دی کردا
0: جے کوئی کسی دا عاشق ہوئے تے
1: اسے دی کردا
0: واہ جی اچھا
1: جے کوئی کسی دا عاشق ہوئے تے اسے دی کردا سو سو وقت بہانے کر کے مرنے اس نے مردا.
0: ارے واہ ارے بہت کمال بہت کمال اعلی.
1: آج میں اتنا ہی کہوں گا آج دن کچھ بڑا عجیب سا ہو رہا ہے اس لیے بس آپ سے بات کر کے کچھ سکون مل گیا.
0: چلے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مزید سکون سے نوازے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کیانی صاحب کہ دل کے یہ جو تار ہوتے ہیں نا جو دکھی تار ہوتے ہیں یہ اگر چھڑ جائے نا تو اس دکھ کے اندر بھی ایک چھوٹا مزہ ہوتا ہے.
1: بڑی لذت ہوتی ہے.
0: ہاں تو اس لذت کو نا محسوس کیجیے اس چاشنی کو محسوس کیجیے.
1: وہ مشہور زمانہ غزل ہے کہ زمانے میں اور بھی دکھ ہیں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا.
0: ارے واہ ارے واہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے علاوہ. باجی واہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اپنوں کا دکھ ہے نا کیانی صاحب یہ جو اپنوں کی جدائی کا دکھ ہے یا اپنوں کے ساتھ گزرے لمحوں کا دکھ ہے یا اپنوں کے ساتھ وہ جو باتیں آپ نے کبھی کیں اور وہ آپ کو یاد آ رہی ہیں تو ان کا دکھ ہے اس کے اندر بھی ایک چاشنی ہے اس کو محسوس کر کے. اور انسان یہ سمجھتا ہے یا سوچتا ہے کہ یار یہ لمحے ختم نہ ہو. بعض کڑوی چیزیں زندگی کے اندر نا وہ آپ کو لذت دیتی ہیں میٹھی ہوتی ہیں یہ ان میٹھی چیزوں میں سے یہ کڑوی چیز ہے.
1: بڑے محبت والے آدمی ہیں اور بڑی رسرچ بھی ہے. آپ یہ بھی کہنا
0: صاحب آپ کی
1: ماڑیا نو چنگیا نو سارے
0: ٹنگی جانے نال ویسے ڈالے ہوتے جو کہنے نا ماسی اندر جگہ نہیں پائی تو ڈالے تو پلم جا ہے نال ڈالے تو پلم ہی جا. چلو جی کیانی صاحب خیال رکھے اپنا بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ.
0: جزاک اللہ.

0: अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी इंसिडेंटली हो रही होती हैं कि आपको लगता है कि यार आज का दिन ही कुछ ऐसा था, या आज की ना बस आज ऐसा है, या आज ऐसा ही हो रहा है। तो आज आते हुए ना मेरे साथ आज दो जो है वो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैं सोच रहा था कि यार आज का प्रोग्राम पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब कैनी साहब आते हैं, मीरपुल साहब आते हैं, या जो बाकी मेरे कॉलर्स आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज ईदू आया है काफ़ी अरसे के बाद, तो जब कभी भी अभी हैदराबाद से जब अंसारी साहब आते हैं या बाकी जितने भी दोस्त हैं जब आते हैं, तो फिर प्रोग्राम ना अच्छा हो जाता है। आज मुझे वैसे लग रहा था कि आज का प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। हुआ कुछ ऐसे कि जी आज ना वैसे अमूमन जो फ्राइडे का दिन होता है वो मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, तो जहाँ हम बैठते हैं वहाँ हम कुकिंग करते होते हैं। तो आज मैंने जो है वो वैसे तो मेरे फ्रेंड जो हैं वो मेरे दोस्त एक हैं, वो शेफ़ हैं, वो पकाते हैं और हम खाते हैं, लेकिन आज जो है उनको मैंने कहा कि आज मैंने पकाना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, आप बनाएं, आज क्या बनाएंगे? मैंने कहा जी आज ना गोश्त और भिंडी बनाते हैं। तो खैर मैंने वो सारा बंदोबस्त किया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरती के साथ, बड़ा डिसेंसी के साथ मैंने जो जितने भी नवादरात थे वो सारे काटे और कटिंग बोर्ड के ऊपर सारे सजा के रखे। फिर बड़ा अच्छा मैंने प्याज भूना और भून के फिर उसके बाद उसके अंदर जो टमाटर डाले उसको भी बड़ा काट कूट के बड़ा खूबसूरती से, जो सब्ज़ मिर्चें डाली हैं उनको भी बड़ी खूबसूरती से काटा, उनकी भी गार्निशिंग बड़ी अच्छी की। सब कुछ कर कर के बिल्कुल सारी चीज़ें ओके करके जब मैंने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी और फिर ना मैं चला गया जी कहीं कहीं बाहर, थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। और जब मैं थोड़ी देर के बाद जो है वो दरवाज़ा नॉक हुआ और मुझे आवाज़ आई, खुर्रम खुर्रम। मैं भागता हुआ बाहर आया, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार भाई क्या कर रहे हो, वो देखो वो सारा जल गया। और तुम हमें बता के तो जाते कि भाई हमने उसके चूल्हे को ऑफ करना था, हम तो तुम पे भरोसे पे थे कि तुम पका रहे हो, तो हमने तो देखा ही नहीं। तो मैं झाके जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया तो सारी की सारी हांडी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत नीचे नीचे वाली हांडी थी वो जल गई। खैर बड़ी मुश्किल से वो हमने ऊपर से हांडी उतारी और नीचे से सारा साफ करके दोबारा से एक दफ़ा ग्रेवी बना के मसाला बना के दोबारा से हमने उसको सेटल डाउन किया और फिर जल्दी जल्दी खाना लगाया क्योंकि टाइम भी कम रह गया था मेरे पास। ये वाकया था जी कोई फिक्स जो है ना 11 बजे का, और 11 बजे से 11:30 बजे तक हमने खाना खाना होता है और 11:30 बजे फिक्स मैंने निकलना होता है ताकि मैं रेडियो पहुंच सकूं। तो खैर ये जब वाकया हुआ और मैं थोड़ा लेट हो गया था, 11:35 पे जो है वो मैं वहाँ से निकला, 5 मिनट मज़ीद लेट हो चुका था। और जब बाहर आया तो गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में ना बड़ी अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी, शप शप शप शप शप, इस तरह की कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने जब शीशा नीचे किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार कोई आवाज़ गाड़ी से ही आ रही है। खैर मैंने गाड़ी साइड पे पार्क की और नीचे उतर के अपनी साइड से लेफ़्ट साइड से पीछे वाला व्हील, सारे व्हील्स देख रहा था, पीछे वाला व्हील देखा तो वो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन के साथ चिपका हुआ था। मैं सोच रहा था भाई अभी तो मैंने इतने अच्छे वाले टायर डलवाए थे, क्यों ऐसा क्यों हो गया? और मेरे पास वक्त जो है वो बिल्कुल 20 मिनट्स रह चुके थे। और खैर मेरी किस्मत अच्छी थी कि बिल्कुल ही सामने जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी उससे तकरीबन ये कह लें आप 200 मीटर की 300 मीटर पे मुझे पेट्रोल पंप नज़र आ गया। और मैं बस वैसे ही घसीटता हुआ गाड़ी मैंने कहा या तो आज टायर भी गया वहाँ पहुँचाई। और उस भाई साहब को मैंने बोला भाई साहब मेरी गाड़ी में जो है वो टायर पड़ा है स्पेयर, आप वो लगा के दे दें और ये वाला उतार लें, मैंने आपसे कल ले लेना। तो भाई ने कहा जी कि भाईजान 5 मिनट में आपको मैं इसका ना पंचर लगवा के दे दूंगा, आप बस 5 मिनट वेट करें। मैंने कहा अच्छा तो ये अगर 5 मिनट में कर लोगे तो अच्छी बात है, मुझे दोबारा आना नहीं पड़ेगा। यार उस भाई साहब ने बहुत जल्दी जल्दी क्विक एक्शन किया और पंचर वगैरह लगा के दिया। तो मैं सोच रहा था यार पहले तो हांडी जल गई फिर गाड़ी पंचर होगी तो आज का प्रोग्राम अच्छा नहीं होना। और यार मैं गलत था भाई, कभी कभार होता है यार अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं, आज प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मोहतरम, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन साहब हैं, कहाँ से हैं
1: आप? कैसे हैं? हरियत
0: से। मैं बहुत अच्छा हूँ अल्लाह का शुक्र है।
1: मोहब्बतों की सजा बेमिसाल दी
0: उसने,
1: उदास रहने की आदत सुधार दी उसने।
0: वाह।
1: मेरे जिस्म पे जब इसमें जख्म बैठ चुका था वो, फिर जान बूझ कर सांसों की शाल दी।
0: वाह कमाल।
1: आप इस बात की याद कर रहा हूँ
0: जी बासी साहब।
1: गुज़िश्ता शब यह हस्ती बरफराज़ दार थी, मैं था फिर अगले दिन سرخی شوکت اخبار تھی وہ میرا کمال کمال یار
0: مزہ آیا نا آتف صاحب مجھے بھی بہت پسند آئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ سنی تھی لٹرلی آئی واز کرائنگ کیسے کر لیتے ہیں ایسے ویسے بس یہ وہ ایسے ویسے تیسے ایسے اچھا بس مجھے کسی نے سنائی تھی جی ہاں مجھے کسی نے سنائی تھی اور میں لٹرلی میں نے نا بڑا رویا تھا اس غزل پہ مجھے لٹرلی میں رو رہا تھا کہانی کیا تھی کہانی کوئی نہیں تھی لیکن اس ان لفظوں کے اندر اتنی وہ دکھ بھرا تھا نا کہ ایک شخص اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ وہ تختہ دار پہ ہے اور وہ اپنی محبت کا قصہ سنا رہا ہے اگر آپ اس کو بڑا ڈیپلی آپ سنیں نا آپ اس کو پہلی دفعہ اچھا مجھے افیکٹ بھی اس نے پہلی دفعہ ہی کیا دوسری دفعہ جب بھی سنی ہے اتنا افیکٹ نہیں ہوا جتنا پہلی دفعہ سننے پہ ہوا تھا اچھا آپ کو یاد بھی ہے چلیں یاد رکھیں پھر اس کو عاطف صاحب تھینک یو سو مچ بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا وقت میرے پاس کم ہے جی کالر زیادہ ہیں السلام علیکم جی محترم کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں حافظ عبد الرحمان صاحب ملتان سے بات کر رہے ہیں ارے حافظ صاحب کیسے ہیں آپ اچھا تو جو چیز مشکل سے ملے وہی تو مزے دار ہوتی ہے نا
1: میں ابتدا کر رہا ہوں ابتدا ہے رب جلیل کی بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں دیکھتی آنکھ سنتے کان حافظ عبد الرحمان کا سلام
0: وعلیکم السلام اختتام اختتام
1: اور جو امیر بلائے تھے اس نے اشاری اچھی پڑی ہے اور ٹرین آواز صاحب آتے ہیں امیرہ صاحب آتی ہے سمینہ صاحب آتی ہیں اچھے کالر ہوتے ہیں صرف کیا ہے پڑھنے والے اچھے اور سمجھنے والے بھی اچھے ہوتے
0: ہیں ایسے ہی
1: باقی اللہ پاک سلامت رکھے تمام دوستوں کو میں سلام بھی کہوں گا جس میں میرے بہن بھائی سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو رحمت کرے آپ کو خصوصی رحمت کرے جو بات پہلی تھی وہ کہہ نہیں پائے آپ
0: ارے تھینک یو بہت شکریہ سر جزاک اللہ اپنا خیال رکھیے گا حافظ صاحب دعا میں یاد رکھیے گا بائے بائے وقت بہت کم ہے مقابلہ بہت سخت ہے جو بھی کالر آئے تھوڑی تھوڑی بات کرے تاکہ ہم جلدی جا سکیں السلام علیکم جی کالر
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام بس انیلا آپ کی کال کا انتظار تھا بس ہوں میں گوٹ مار لیا گوٹ سمجھتی ہیں آپ اچھا پتا گوٹ سمجھتی ہیں آپ گوٹ کسے کہتے ہیں آلتی پالتی مارنے کو گوٹ کہتے ہیں نا تو میں کرسی کے اوپر نا آلتی پالتی اب میں کرسی کے اوپر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا ہوں
2: یہ
0: زیادہ مزے سے بیٹھا جاتا ہے نا میں گاڑی میں بیٹھوں تو میں اسی طرح مت بجی ہوں باہر بھی لوگ چیچا چو پو پو سن رہے ہوتے اندر بھی چوچا پو پو سن رہے ہوتے ہیں پانی والی چیزیں
2: کھانے والی چیزیں کھا رہی ہوتی
0: یہ پانی والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں ویسے
2: پانی والی نہیں کھانے والی
0: مطلب مچھلیاں شچلیاں کیکڑے شکڑے کھاتی ہیں
2: کیکڑے شکڑے نہیں کھا رہی ہوتی
0: اچھا تو پانی والی اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں پانی والی چیزیں ایک مینڈک ہوتی ہے کیکڑا ہوتا ہے ایک مچھلی ہوتی ہے پانی والی چیزیں نہیں آپ نہیں کھاتی ہوں گی ویسے جاپنیز تو کھاتے ہیں بڑا اچھا سوپ بناتے ہیں ویسے اس کا انیلا آپ کو
2: چیزوں کا کافی کافی کچھ بناتے ہو
0: ہاں مجھے ریسیپی آتی ہے ویسے میں بہت اچھا کوک ہوں آپ اگر ریسیپی چاہیے تو میں دے دوں گا آپ کو
2: خرم آپ کیا چاہ رہے ہیں
0: میں یہ چاہ رہا ہوں آپ پانی والی چیزیں کھاتی ہیں تو پانی والی چیزوں میں ڈشز ایڈ کریں آپ اوکے تو انیلا بتائیں کیا ہے دل میں ایسا کوئی کیا ایسی کسک باقی ہے جو نکالنا چاہتے ہیں
2: کچھ بھی نہیں ہے اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میری یہ بات رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہائے میں جا کے کہہ دوں یا کہہ ہی آؤں گی اور ضرور گاؤں گی اتنا کوئی نہیں ہوتا
0: جو بھی آتا ہے
2: ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے جتنی بات پہنچانی ہے وہ پہنچ جاتی ہے वो हमसे हो जाती है।
0: आप तो एक्स्ट्रा कह के आ जाती है ना, आप तो एक्स्ट्रा कह के आ जाती हो, बाद में सोचती हो कि हाय अल्लाह इतनी कहना सी आई भी कह देता
2: ये तो मैं रेडियो पे आके बड़ा बड़ा कुछ कह लेती, बातें कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी जगह जब कहीं भी फैमिली में भी अभी किन कह रहे हैं आधे से पूरा फंक्शन गुजर जाएगा उसमें से शायद दो या चार रुपए मैंने बात की होगी।
0: अच्छा
2: बात नहीं करती मैं वहाँ,
0: मतलब सारी बातें बचा के हमारे लिए रखी होती है।
2: मैंने सारी बातें मैंने खुर्रम के दिमाग में नहीं करना,
0: खुर्रम के लिए तो नहीं रखी होती ये तो ना मुझे जो है ना वो शापर फाड़ो मेरे ऊपर आप जो है ना सारे मैं जब भी मैं रेडियो मैंने लगाया नहीं है अनिला की आवाज आ रही होती है, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अनिला बात कर रही हूँ लाहौर से कैसे, और सारे कह रहे थे आए अनिला आई है, आए अनिला आई है, अनिला ने वाह अनिला ने अपना बखरा निजाम बढ़ाया।
2: मजे की बात है कि दिन के कितने ही शोज ऐसे होते हैं जिनमें मैं कभी भी नहीं आती, मैं सुनती भी हूँ, टाइम भी नहीं होता दिन में।
0: अच्छा ये कैसे होता है जब मैं लगाता हूँ अनिला आप जरूर होती हो, पता ये क्या चक्कर है जब भी मैं गाड़ी पे बैठता हूँ अक्सर मैं गाड़ी में बैठ के रेडियो ही लगाता हूँ।
2: दरअसल अल्लाह ताला वो सुबह सुनाते हैं, देखो खुर्रम इतने अच्छे कॉलर है, इतनी अच्छी कॉलर अनिला कदर को देखो इसको सुनो
0: ये बात
2: है। आप इतना अच्छा अप्रिशिएट करते हो, इतना अच्छा मुझे आप बोलते हो, इतनी हिम्मत देते हो, हौसला देते हो, इतना अच्छा आप
0: नहीं सारे ही देते हैं अनिला, मैं कल्ला थोड़ी देना सारे दिन में
2: है? तो ये सबकी मोहब्बतें हैं ना आपके समेत, ये सबकी मेरे बहन भाइयों की मोहब्बतें हैं, अभी जो आए इरम भाई और साजेदार भाई आए और बाकी जो मेरे भाई आए।
0: अच्छा मुझे कभी कभार लगता है यार आरजी इतने वैल्यू ही नहीं थे, सिर्फ अनिला अनिला ने सुनी जा रहे होने लोग साडा प्रोग्राम भी कुछ शायद इतने
2: व्यस्त नहीं,
0: मैं शायद मैं तो समझ रहा होता हूँ कि शायद हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए सुना जाता है कि अनिला कॉल करेगी।
2: वो एक अपनी जगह होती है, सबकी कॉलर्स की भी होती है, हम वेट करते हैं मुख्तलिफ कॉलर्स का हमारे बहन भाइयों का, लेकिन आरजे ही के साथ तो जोड़ के होता है सब, आरजे नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे,
0: आरजे तो बिच आई मीन बिच बिरमानी पार्टी बन
2: जाएगी, आई मीन आरजे आगे सब कुछ आहो।
0: तो आज तो जैसे आपकी अभी ना जब आप आई हो ना तो मैंने जब बोला ना कि बस अनिला अब प्रोग्राम खत्म हो गया, तो वो उसका मतलब यही था बस और मुक गया, बस अनिला आ गई, सारा दिन जिन्होंने प्रोग्राम सुन रहे होते हैं अनिला की कॉल आ गई,
2: टोकरी मार के बैठ गया हूं, अनिला बोलेगी तो मैं सुन के तेरा पूछ चक्कर हो
0: जाना, हाँ बस उधर बात बात खत्म।
2: नहीं नहीं अभी भाई भी आए, नजीर भाई भी आए, सारे भाई आते हैं मेरे, सारी मेरी बहने आती है, तो और फिर रौनक लगती है, मजा आता है सबकी गुफ्तगु सुन के। अब देख ले साजिद भाई मैं प्रेस कर रही हूँ खाने में, ये खुर्रम मुझे कैसे कैसे सूपों की
0: नहीं, आपने खुद कहा है ना मैं गाड़ी में बैठती हूँ मैं पानी वाली बता रहा है, आप मुझे खुद कह रही है ना कि मैं गाड़ी में बैठती हूँ पानी वाली चीजें खाती हूँ, तो मैं पानी वाली चीजें इमेजिन कर रहा था कि कौन कौन सी,
2: नहीं कह रही थी मैं खाने वाली कह रही थी।
0: अच्छा पानी वाली, वाकई पानी तो आज चीज में पड़ता है, चले आप ज्यादा चाहे
2: आप इतना अच्छा सब कुछ प्रोग्राम भी करते हो और इतना अच्छा अप्रिशिएट करते हो, इतना अच्छा एंटरटेन करते हो हम जब आते हैं, और एक उम्मीद होती है कि हम आएंगे और हमसे बात होगी, सबसे बात हो जाएगी इस तरह से, और सबका हालो हवाल सुनने को मिल जाता है, शाम दो आ जाती है। आज ईदू भी इतने दिनों बाद आया, बहुत अच्छा लगा, ईदू आया करो, वैसे पता है खुर्रम इससे फौरन कॉल किस लिए काटी गई, या फिर ये ना कह दे ईदू मैं कराची आ रहा हूँ मिल रहे हो
0: के खुर्रम को मिलना ही ना पड़ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा ये ईदू वाहिद बंदा है, ईदू वाहिद बंदा है जो आरजे से भाग रहा होता है, वैसे दुनिया आरजे को कह रही थी यार मिल लेना है, हम ईदू के पीछे भाग रहे थे, ईदू मिल लो ना यार, ईदू कह रही थी मैं नहीं मिलना मैं नहीं मिलना, अब अच्छा नहीं रहा अनिला, अब अच्छा नहीं रहा अनिला, अब अच्छा नहीं रहा ईदू, पता है क्यों,
2: मिलेगा तो अच्छा होगा ना,
0: नहीं नहीं नहीं अब जो मिलने की बात लगा है वैसे भी अच्छा नहीं रहा ये, अब अब इसने अपनी हंसी चेंज कर ली है, जिस चीज के लिए मशहूर था, जिस चीज के लिए हम इससे मोहब्बत करते थे, वो इसने चेंज कर लिया,
2: नहीं ये पीछे एक दो शो में मैंने इसकी आवाज सुनी थी, वो वैसे ही हंस रहा था पूरम, लेकिन अभी ना चूंकि उसका गला खराब है ना बकौल उसके, तो शायद इसलिए वो
0: अच्छा आज उसने नींबू खाया
2: है, जैसे उसने बोला ना तो मैंने पहचान लिया था कि यही तो
0: है। अच्छा मैं भी बस ऐसे ही आमी।
2: आप जान के ड्रामे कर रहे पहचान सबको जाते हैं, बड़े तेज है ये, चोरी चोरी बादाम खाते हैं, नजीर भाई बताते नहीं है, बस अलहदा बात है,
0: नहीं अच्छा बादामों के बारे में ना
2: भाई
0: चलो ओके जी सलामती सारा नाम याद रखे हुए अनिला बाजी ने, अस्सलाम वालेकुम जी कॉल, हाँ जी हाँ जी लग गई कॉल,
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
3: यासीन अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: कौन बात कर रहे हैं? यासर अली?
3: यासीन।
0: यासीन अली जी। यासीन भाई कैसे हैं आप?
3: ठीक ठाक हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? ठीक हो?
0: मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। गिलगित का मौसम कैसा है?
3: गिलगित से नहीं बात करूँ मैं, इस्लामाबाद से बात कर रहा
0: हूँ। आप गिलगित से नहीं हो?
3: नहीं नहीं इस्लामाबाद से।
0: मुझे ऐसे क्यों खुशबू आ रही है कि आप गिलगित से हो?
3: नहीं नहीं इधर बारिश का मौसम है और बारिश बहुत है।
0: अच्छा आप किधर से हो? बेसिकली कहाँ से हो? अच्छा सिंध सांगड़ से हो। चलो खुशबू मुझे आ रही थी बड़े दूर वाली ना तब।
3: अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ, सिंध सांगड़ का हूँ।
0: इस्लामाबाद में क्या करते हो आप
3: जी?
0: इस्लामाबाद में क्या करते हो आप?
3: मैं इधर मजदूरी करता हूँ।
0: अच्छा तो कैसे रही आज आपकी दिहाड़ी?
3: आज बहुत अच्छी, आज बारिश भी थी और दिहाड़ी भी नहीं लगी।
0: अच्छा दिहाड़ी नहीं लगी
3: जी जी।
0: ओके तो अच्छा
3: अच्छा। और
0: तो आजकल आजकल क्या क्या काम कर रहे हो? क्या किधर दिहाड़ी लगा रहे हो?
3: मैं उधर ड्राइविंग करता हूँ।
0: ड्राइविंग करते हो
3: जी जी।
0: अच्छा चलो जी वेरी गुड। ख्याल से ध्यान से ड्राइविंग किया करो ताकि जो है ना इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखा करो
3: जी।
0: कुछ और कहना है?
3: मेरे दोस्तों के नाम लेने
0: जी। लो लो।
3: और मारा मली और दूसरा मेरा दोस्त शकील।
0: शकील।
3: और मेरा उस्ताद अब्दुल्ला जी जी।
0: और
3: रियाज।
0: अच्छा और
3: ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैं सलाम देना चाहता हूँ।
0: ओके जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज अब्दुल्ला शकील सारों को सलाम
3: जी जी।
0: और कुछ?
3: और अल्लाह का शुक्र है आप सुनो।
0: चलो ठीक है मैं सुना रहा हूँ, सुनो फिर ठीक है
3: जी जी।
0: ओके अरे सो स्वीट। यासीन भाई आए थे मेरे साथ जी और अपने दोस्तों को सलाम देना चाहते थे, अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते थे। अल्लाह आपकी दोस्ती सलामत रखे यासीन भाई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी मोहतरमा कैसे हैं आप? सलाम देना चाहते थे, अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते थे। अल्लाह आपकी दोस्ती सलामत रखे यासीन भाई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।

0: आप कैसे हैं?
1: तो
0: जी भाई कहिए, क्या कहने आए हैं?
1: मुझे कहना है कि
0: माइक थोड़ा दूर करके, मुंह मोबाइल मोबाइल से मुंह थोड़ा दूर करके, दूर थोड़ा सा दूर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी।
1: मुझे ये कहना है कि आप कह रहे थे कि आपके दिल की बात जो है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: मेरे दिल की बात है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चियों बच्चों मेरे नवासियों नवासियों पोतियों पोतों के नसीब अच्छे करें।
0: आमीन।
1: और मुझे अल्लाह अपने प्यारे घर में बुलाए।
0: आमीन, आमीन।
1: आज नसीब करें अल्लाह ताला।
0: आमीन, आमीन।
1: जो जो बंदे सुन रहे हैं मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ये दुआएं कबूल फरमाए।
0: आमीन जी, आमीन। सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच भाई। ओके ओके। दो बज के 4 मिनट हैं, मुझे आरजे के भी कहते हैं। प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल है, आखिरी आखिरी कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल
0: है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए मोहतरम। जी मती साहब, क्या कहने आए हैं?
2: मैं आपको ना पाकिस्तान कहूँगा,
0: जरा अगर छोटी सी है तो सुना दीजिएगा, अगर लंबी है बड़ी है तो फिर ना सुनाइएगा।
2: जल्दी में सुना देता हूँ, मेरे मन की हो रहे हैं
0: जी।
2: मैं क्या जल्दी में सुना देता हूँ तेज से।
0: अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी सुनाएं।
2: दर्द दिल किसको सुनाए, मस्त है हर एक यहाँ। अपनी दुनिया में है गुम सब ढूंढे अपना पन कहा। अपनी दुनिया में है गुम सब ढूंढे अपना पन कहा। सुनके उसकी दास्तां सारी अलग से ये पलक। खोला अपना दुख तो बोला मिलते हैं कल दिया। आगे सीने से लगे ऐसे कि खुश हो जाए दिल। अगले ही पल कंध करके हंस के हम पे हो रमा।
0: वाह वाह वाह वाह, कमाल जी कमाल। अस्सलाम वालेकुम
3: जी। खुरम साहब।
0: जी जी, खुरम बात कर रहा
3: हूँ। खुरम साहब, आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान दत्त लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: जी सलमान साहब, फटाफट कहिएगा क्या कहने आए हैं।
3: बस आपके प्रोग्राम की तारीफ ही करनी है, सुनते रहते हैं प्रोग्राम। कॉल मिली आज, बड़ी खुशी है, जैसे अंधेरे में रोशनी हो गई है।
0: आए हाय हाय हाय हाय, दीवे बल गए ने,
3: कमाल हो गया, यकीन करें। और आपकी बातें सुनते रहते हैं, बड़ा मजा आता है। अल्लाह
0: चले जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। जी भाई, इस्लामाबाद से ही करते हैं। क्या कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमा करें?
3: नहीं, मैं लाहौर से
0: भी लाहौर। लाहौर मेरी आवाज पहुंच जाती है ना, अभी देखें आप तक पहुंच रही है लाहौर। नहीं, मैं सिर्फ इस्लामाबाद से प्रोग्राम करता हूँ, और एक ही थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया,
3: बड़ा मजा है।
0: वालेकुम अस्सलाम, बाय बाय।

0: एक आखिरी कॉलर लूंगा जी, और उसके बाद फिर आपसे इजाजत जाऊंगा। दिल की बातें सुनने आया था मैं आपसे, और दिल की बातें सुनी आपसे। चलो दो कॉलर ले लेते हैं। एक, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: जी थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में 12 चांद लगे हैं सर।
0: अच्छा, 12 कौन कौन से? 12
1: 12 सर। तो आपको बहुत बहुत खुशियां। तो आप, मैं सोच रहा था किसके सालगिरह, आपकी या?
0: नहीं, यहाँ पे एक मोहतरमा मेरी एक छोटी बहन कोई आई है, वो उसकी सालगिरह थी। मुझे नाम क्या है उनका, नाम क्या?
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। आखिरी कॉलर,
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है? आखिरी कॉल मोहतरमा की लग गई। जी फायजा नसीर, कैसी हैं आप? आज आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉलर हैं भाई, कमाल नहीं हो गया वैसे?
2: थैंक यू सो मच।
0: तो फायजा

0: तस्वीर क्या करती हैं आप?
1: मैं घर
0: घर में होती हैं, घर वालों के साथ होती हैं।
1: मैं सोचती कि आपसे ये बात करना चाहूंगी। मेरे दिल में जो बात होती है ना वो मैं कह देती हूँ, और मेरे दिल में जो बात थी मैंने उनको कह दी थी। वो मेरी मोहब्बत के बाद आज मेरे लाइफ पार्टनर है।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, तो संत फिर छक्का मार देता।
1: और दूसरी बात ये कि अगर मुझे किसी की भी कोई भी बात अच्छी लगे बुरी लगे मैं कह देती हूँ, दिल में बात नहीं रखती। क्योंकि दिल में अगर मैं बात रखती ना मैं बेचैन होती रहती हूँ, मुझे गुस्सा आता रहता है। और अगर हम कभी बात टाइम पे ऐसा समझते हैं कि ये अगर हम सही बात करें तो गलत हो सकती, गलत करें तो सही हो सकती, यही समझते रहे ना समझते रहे तो फिर हम दिल की बात कर नहीं सकते। लेकिन दिल की बात कर देना तो ये कि हमारे दिल का बहुत कम हो जाता है और हमें तसल्ली हो जाती है कि हमने कहे तो दिया था ना।
0: बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो कह देना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एग्रीड हूँ आपसे।
1: थैंक यू सो मच। और अनुजा आप लोग सभी को सलाम। और अनुजा भी बहुत अच्छी है और मैं इनको सुनती रहती हूँ। आज मैं
0: देखा
1: इनके बारे में बात
0: देखा
1: कर रही
0: देखा,
1: तो
0: ए भी अनिल आपी दी फैन
1: करूँ।
0: निकली, ये भी अनिल आपी दी फैन निकली। अनिला तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, अनिला बाजी आपको को बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये आरजीज की ना नौकरी
1: तो
0: खा जाएगी।
1: आती है और आप सभी से रोना चाहती है, आप सभी आरजी आते हैं तो हम लोगों को सभी को मौका मिलता है आने का और ना हम कैसे आ सकते हैं।
0: नहीं अनिला बाजी हमारी नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, खा जाएगी हमारी नौकरी।
1: सभी सुनने वालों को सलाम, हमेशा सलामत रहे।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप मेरे प्रोग्राम की आखिरी कॉलर थी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सलीम हनीफ मेरे साथ जी फेसबुक पे शामिल रहे लाहौर से, थैंक यू सो मच सलीम हनीफ। अली अब्बासी मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे, प्रोग्राम को कह रहे हैं जी गुड शो, थैंक यू सो मच। और हानिया नूर मेरे साथ शामिल हाल रही, थैंक यू सो मच हानिया नूर। तामिल एवान मेरे साथ रहे जी, हुमैरा नाज मेरे साथ रही, मलिक वसीम मेरे साथ रहे, मेरीना बिलाल रही, फरा अफजल रही, वकास तबस्सुम रहे, फजल अब्बास रहे, फैसल अब्बास रहे, सना मिनहास रही, जन्नत सलीम रही और काजी वकास रहे मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल। इसके अलावा जी अलिशवा मुझे रावलपिंडी से सुनती रहीं, असमा मुझे इस्लामाबाद से सुनती रहीं, आमना मुझे इस्लामाबाद से शामिल हाल रहीं, सुमैरा मेरे साथ जी रावलपिंडी से शामिल हाल रहीं, आयशा मेरे साथ गुजर खान से रहीं, तैयबा वासफ मेरे साथ रहीं इस्लामाबाद से, जोशील मेरे साथ इस्लामाबाद से रहीं, सबिया जावेद रहीं रावलपिंडी से, इरम जावेद मेरे साथ रहीं जी रावलपिंडी से, हादिया खान मेरे साथ लाहौर से रहीं, फातिमा अटक से मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हाल रहीं, सुमैरा मेरे साथ जी रावलपिंडी से शामिल हाल रहीं। बिस्मा कराची से सुन रही हैं जी, कोमल मेरे साथ गुजर खान से शामिल रही, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। होपफुली आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा और आज के प्रोग्राम में आपके साथ जो गुफ्तगू रही वो बहुत अच्छी रही, मुझे बड़ा मजा आया। आज सब कॉलर्स के साथ बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके कॉमेंट्स पढ़ने का बहुत शुक्रिया, आपके कॉमेंट्स मुझे मिले बहुत शुक्रिया आपका। 4471 पे भी कुछ लोग आए हैं, मैं उधर भी नजर दौड़ाए देता हूँ यार।

बिलाल सुल्तान जी 4471 पे रहे मेरे साथ, अदरीस नवीस मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हाल रहे हैं, सबने प्रोग्राम की तारीफ कीजिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर जिंदगी रही, अगर सांसों ने वफा की, तो आपके साथ मुलाकात होगी अगले जुम्मे को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। के भी आपके साथ रहा और किसी के कान को, किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी हो, कोई बात किसी को बुरी लगी हो, किसी के साथ दुराने कॉल दुराने मैसेज पढ़ते हुए कोई भी बात ऐसी मेरे जबान से निकली हो जो किसी के दिल के ऊपर गिरा गुजरी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी का खासगार हूँ, रब के हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ। इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ, ख़ताएँ सज़द हो जाती हैं, ख़ताएँ माफ़ कर देनी चाहिए, रब की सुन्नत है कि ख़ताएँ माफ़ कर देनी चाहिए, अगर कुछ गुनाह हुआ हो, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। प्रोग्राम में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्रोग्राम को बेहतर करना चाहते हैं, सो आप मुझे प्रोग्राम में फीडबैक दे सकते हैं, किसी मौजू पर बात करवाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप मुझे कहना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, kb.baig लिखेंगे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। सो आपने मुझे कुछ भी कहना है आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, केबी को दीजिए इजाजत, केबी साइनिंग आउट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है, और ऐ पैगंबर तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो।
1: अल्लाह।

0: और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।
1: वो

ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है।

और जब वो दोजख में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोजख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो।